एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 45 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए सुनिए हरिहरन और अनुराधा पौड़वाल के स्वरों में ये शिव वंदना।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए सुनिए गायिका चेतना के स्वर में ये कृष्ण भक्ति गीत।

0: इसी भक्ति गीत के साथ आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: भगवान महावीर की वाणी में जीवन की सत्य का ही उद्घाटन हुआ है, तदापि उनकी वाणी में जो तत्व प्रफुल्लित हुए हैं उनमें आज की समस्याओं के समाधान भी विद्यमान है। वस्तुतः समस्या तो मात्र एक ही है, और वो है कि हम सब सुखी कैसे हों। सुख पाना और दूसरों के दुख दूर करना जीवन का एकमात्र महत्वपूर्ण कार्य है। ये समस्या मात्र वर्तमान की ही नहीं वरन सर्वकालों और सर्व क्षेत्र की है। संपूर्ण विश्व में सुख और शांति कैसे हो, यही तो आज की प्रमुख समस्या है। हमारे जीवन में हवा पानी और भोजन का जो महत्व है, वही महत्व धर्म, धार्मिक आस्था और धार्मिक आदर्शों का भी है। किंतु हम हवा पानी और भोजन की जितनी आवश्यकता और उपयोगिता अनुभव करते हैं, उतनी धर्म और धार्मिक आदर्शों की नहीं करते। संसार में सभी सुख की कामना करते हैं और दूसरों के लिए निरंतर प्रयास भी करते हैं, किंतु वास्तविक सुख क्या है और सुखी होने का सच्चा मार्ग क्या है, ये सही रूप में न जानने के कारण उनके प्रयत्न सफल नहीं हो पाते। जीवन में दुख के कारण भौतिक जगत में नहीं, हमारे मानसिक जगत में विद्यमान है। जब तक हमारे अंतर में मोह राग द्वेष की ज्वाला जलती रहेगी, तब तक पूर्ण सुखी होना संभव नहीं है। मोह राग द्वेष की ज्वाला शांत हो, इसके लिए धर्म और धार्मिक आदर्शों से अनुप्रेरित जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक आदर्श भी ऐसे होने चाहिए कि जिनका संबंध हमारे जीवन की वास्तविकताओं से हो। जो आदर्श व्यवहारिक जीवन में सफलतापूर्वक न उतर सकें, जिनका सफल प्रयोग दैनिक जीवन में संभव न हो, वे आदर्श कल्पना लोक के सुनहरे स्वप्न तो हो सकते हैं। व्यवहारिक जीवन की कसौटी पर जब हम भगवान महावीर के आदर्शों को कसते हैं तो वे पूर्णतः खरे उतरते हैं। हम स्पष्ट अनुभव करते हैं कि उनके आदर्श कल्पना लोक की ऊंची उड़ाने नहीं, बल्कि वे ठोस धरातल पर प्रयोग सिद्ध सिद्धांत हैं और उनका पालन व्यवहारिक जीवन में संभव है। वे जीवन को सुखी शांत और समृद्ध बनाने के लिए पूर्ण सफल एवं सहज साधन हैं। जीवन को पवित्र सुंदर और सुखी बनाने के लिए

0: भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, आचार, ब्राह्मण और अपरिग्रह ये 5 महान आदर्श संसार के सामने रखे। व्यवहारिक जीवन में इनके सफल प्रयोग के लिए उन्होंने इन्हें साधु और सामान्य जनों को लक्ष्य में रखकर महाव्रत और अनुव्रत के रूप में प्रस्तुत किया। सभी धर्म ग्रंथों, गीता, रामायण आदि का पाठ मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए ही है। इनके अर्थ में अवगाहन करने पर मनुष्य को लगता है वह संसार के दम घुटने वाले वायुमंडल से निकलकर आत्मानुभूति के निर्मल एवं शांत वातावरण में आ गया है। सभी धर्मों के उपदेश में मनुष्य को बड़ा बनाने, ऊंचा उठाने एवं जीवन देने वाला संजीवन होता है। ईश्वर पर दृढ़ आस्था हमें पाप कर्म से रोकती है। ईश्वर विश्वास, सद्विचारों, नैतिकता तथा सेवा की प्रेरणा देता है। धर्मशास्त्रों में बताए गए मार्ग पर चलकर संतोष तथा सादगी का जीवन जीकर ही सच्ची सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। धर्म मार्ग पर चलने से ही मानव सच्ची मानवता की भावना से प्रेरित होकर दूसरों का भला कर सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख मुकेश दुबे का था, वाचक स्वर आशीष दवे का। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर श्रीकांत पारगांवकर का है।

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर श्रीकांत पारगांवकर का था। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
1: किसान भाई बहनोनी राम राम। आज हम कृषि चर्चा में बात करांगा सोयाबीन की खेती का बारा में। वाचक स्वर छे वाणी महोदय। भाई बहनोनी सोयाबीन की खेती हल्की न रेतीली भूमि का छोड़ी न सभी प्रकार की भूमि में करी जा सकाय, जहाँ पर कि पानी रुक तो नहीं होए। बारिश शुरू होने का पहला दुई सी तीन बार बखर न पाटो चलाई न खेत का तैयार कर लेनो चाहिए। सोयाबीन की बुआई जून का अंतिम सप्ताह से जुलाई का पहला सप्ताह तक किसान भाई ने ख करी देनो चाहिए। बीज का अच्छा अंकुरण कर लेना जमीन बोनी करता समय जमीन में 10 सेंटीमीटर गहराई तक अच्छी नमी होनी चाहिए। अगर किसान भाई जुलाई का पहला सप्ताह का बाद में बुआई कराए तो उनका 5 से 10% बीज दर प्रति हेक्टर बढ़ ही देना चाहिए। सोयाबीन की बोनी किस्म न का लेना कतार सी कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर न बड़ी किस्म न का लेना कतार सी कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सोयाबीन की फसल का साथ किसान भाई अरहर ज्वार मक्का तिल की अंतर्वर्ती फसल भी लगाई सकाए। अब बात करें पोषण प्रबंधन की। सड़ी गोबर की खाद 2 टन प्रति एकड़ आखिरी बखरने का समय खेत में डालना चाहिए। बोनी करते समय 8 किलो नत्रजन 32 किलो स्फूर 8 किलो पोटाश न 8 किलो गंधक प्रति एकड़ खेत में डालना चाहिए। ये मात्रा ख मिट्टी परीक्षण का आधार पर घटायो या बढ़ायो जा सके। शुरुआती अवस्था में 30 से 40 दिन तक खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। बतरौना पर कोलपा डोरा चलाईना खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। दूसरी निंदाई अंकुरण होने का 30 से 45 दिन बाद करना चाहिए। खरपतवार नष्ट करने का लेना क्यूजेलेफोप इथाइल 400 मिली प्रति एकड़ न चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार न का लेना इमेजेथाफायर 300 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। सोयाबीन की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन फल्ली नमा दाना भरता समय सितंबर का महीना में खेत में पर्याप्त नमी नहीं होए तो 1 या 2 हल्की सिंचाई जरूरत के अनुसार करनी चाहिए। सोयाबीन की फसल का नुकसान पहुंचाने वाला कीट छे नीला भ्रंग इल्ली। ये छोटा पौधा न का पत्ता ख खाए। दूसरो छे चक्र भ्रंग न तना की मक्खी। इना कीट न को आक्रमण से 5 से 50% तक पैदावार में कमी आवाज। इनका नियंत्रण कर लेना कीट न की प्रारंभिक अवस्था में जैविक कीट नियंत्रण कर लेना बीटी न व्यूवेरिया बेसियाना आधारित जैविक कीटनाशक 400 ग्राम या 400 मिलीलीटर प्रति

0: एकड़ की दर सी बोएगा 35 से 40 दिन न 50 से 55 दिन का बाद छिड़काव करना चाहिए। साथ एनपीवी को 250 LE का बराबर 200 लीटर पानी में घोल बनाई न प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। साथ किसान भाई बहनों ने फसल बोना बाद सीज फसल की निगरानी करता रहना चाहिए। न लाइट ट्रैप न फेरोमैन ट्रैप खेत नंबर लगाना चाहिए। पत्ता न पर फफूंद जनित रोग न कर नियंत्रण करना कार्बन डाइजिम 50 WP या थायोफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% सी 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिलाई न छिड़काव करना चाहिए। पहलो छिड़काव 30 से 35 दिन की फसल होना पर करना चाहिए न दूसरो छिड़काव 40 से 45 दिन की फसल होना पर करना चाहिए। सोयाबीन की कटाई का बाद जब गड्ढा नख 2-3 दिन का बाद जब गड्ढा अच्छे से सुखाई जाए तब सोयाबीन फसल की गहाई करना चाहिए। तो किसान भाई बहन नोनी आज की कृषि चर्चा में बस इतना।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। आज का विषय था सोयाबीन की खेती। वाचक स्वर वाणी महोदय का था। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए वार्ता दैनिक जीवन में गणित का महत्व। वार्ताकार होंगी वंदना मिश्रा। सुबह 7:20 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए कवि एवं साहित्यकार संतोष परिहार से काव्य पाठ। सुनहरपल कार्यक्रम होगा सुबह 7:30 पर। सुबह 8:15 पर सुनिएगा निमाड़ी लोकगीत।

सुबह 8:30 पर होगा आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीते गीत। सुबह 9 से 10 तक राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। सुबह 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक रंजनी, प्रस्तुति होगी विशाखा सोनी की, और सुबह 10:40 पर सुनिएगा सुगम संगीत। सुबह 11 बजे से शाम 5:30 तक सुनिएगा राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। हमारी शाम की सभा में शाम 5:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: शाम 6 बजे युवाणी कार्यक्रम होगा। आज का क्रम है हमारे शहर। 6:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। शाम 7:21 पर किसानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत तिलहनी फसलें आज की आवश्यकता विषय पर ग्राम जसवाड़ी के प्रगतिशील युवा कृषक पुष्पेंद्र सिंह मौर्य से जगदीप सिंह फरे की बातचीत। रात्रि 8 बजे, रात्रि 9 बजे और 9:30 से राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। इसी बीच रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।
1: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

आज की ताज़ा खबर में प्रस्तुत है आज प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 30 जून तक है। इसके अंतर्गत शासकीय तालाब जलाशयों को 10 वर्ष के मछली पालन के पट्टे पर मत्स्य पालन करने वाली समिति समूह और मत्स्य पालकों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संचालित मत्स्य बीज संवर्धन, मत्स्य पालन, झींगा पालन, स्मार्ट फिश पार्लर एवं मछुआ प्रशिक्षण योजनाओं के लिए जिले के हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित है। यह आवेदन समस्त वांछित दस्तावेजों सहित मत्स्योद्योग कार्यालय खंडवा में प्रस्तुत कर सकते हैं।

जलगंगा संवाद अभियान के समापन दिवस पर आज होगी विशेष ग्राम सभाएं, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश वाचन किया जाएगा। 19 मार्च से प्रारंभ हुए इस अभियान में जल संरक्षण से संबंधित 3,50,000 से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है, जिनमें ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, औद्योगिक क्षेत्रों में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन, जल गुणवत्ता परीक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नदी पुनर्जीवन और जन जागरूकता से संबंधित गतिविधियां शामिल है। इस अवसर पर जनसहभागिता, श्रमदान एवं नवाचार के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों और सामुदायिक संगठनों का सम्मान किया जाएगा। कल यानी 1 जुलाई से प्रारंभ होगी विकसित भारत योजना, भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन योजना। जनजातीय छात्रावासों के विद्यार्थियों की कल 1 जुलाई से शिष्यवृत्ति बढ़ी। छात्रों को 1,720 रुपये और छात्राओं को 1,770 रुपये प्रतिमा शिष्यवृत्ति मिलेगी। पल्स पोलियो अभियान के तहत आज घर घर जाकर उन बच्चों को दवाई पिलाई जानी है जो पोलियो बूथ पर पिछले 2 दिनों में बूथ पर न जाकर दवा नहीं पी पाए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है। खंडवा जिले में स्थित कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं तहसील कार्यालय के 100 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र में सक्षम अधिकारी की पूर्ण अनुमति के बिना बड़ी संख्या में नागरिकों के एकत्रित होने पर न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा।

अब कुछ खेल समाचार। भारत के किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में उपविजेता रहे। एनसी सोजन ने महिलाओं की लंबी कूद में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। अब एक नज़र मौसम के हाल पर। पिछले 24 घंटों में खंडवा जिले में 7.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। कल दिन का अधिकतम तापमान रहा 33.0 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान रहा 21.0 डिग्री सेल्सियस।

0: ये थी आज प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। समाचार संकलन फातिमा लोखंडवाला का था।
1: आज की ताजा खबर।
0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता, दैनिक जीवन में गणित का महत्व। वार्ताकार हैं वंदना मिश्रा।
2: सुबह आंख खुलने से लेकर सोने तक हमारे जीवन में कहां कहां गणित है, संख्याएं हैं, अंक हैं। देखिए सुबह हम कितने बजे उठे, आ गया गणित। 6 बजे उठे, कितने ग्लास पानी पिया, कितने प्लेट नाश्ता किया, कितना दूध पिया, यहां पर भी गणित है। तो हम देखते हैं जीवन के हर क्षेत्र में, खाना पीना हो या कोई चीज हो या संख्या, संख्या अनुपात और औसत आ ही जाता है। घर बनाना हो, प्लाट खरीदना हो, यहां पर भी गणित है। कितने बाय कितने का प्लाट है, कितने स्क्वायर फीट के कमरे बनेंगे, जगह गणित है। आइए हम यह देखते हैं कि पाई दिवस ही इसका नाम क्यों रखा गया है और 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। पाई ग्रीक भाषा का एक लेटर है। यह गणितीय एवं भौतिकी नियतांकों यानी कि कांस्टेंट में से एक है, जिसका मान 22.7 अर्थात 3.14159265383587 यानी अनंत तक होता है। किसी वृत्त की परिधि जिसे 2πr कहते हैं, व्यास जो त्रिज्या का दुगना होता है 2r होता है, जब इनका अनुपात निकाला जाता है तो वह 3.1459 अर्थात पाई आता है। दशमलव के बाद की पूरी संख्या का अब तक आकलन नहीं किया जा सका है, इसलिए पाई को अनंत भी माना जाता है। एक और मजेदार बात यह है कि व्रत चाहे कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, हमेशा पाई का मान समान आता है, इसलिए इसमें अंकों का अपना विशेष महत्व है और यह सब पाई का मान निर्धारित करता है। देखिए जैसे मैंने बताया आपको, पाई का मान 3.14159 और आगे भी अनंत तक है, लेकिन हम इतने ही नंबर लेते हैं। शुरू का जो पहला अंक 3 है वो वर्ष का तीसरा महीना अर्थात मार्च का प्रतिनिधित्व करता है। दशमलव के बाद के जो 2 अंक हैं 1 और 4 वह 14 तारीख का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह 3.14 हो गया 14 मार्च और बाद के 159 में 1 जो है वो दिन के 1:59 को शो करता है। जिस तरह हम राम जन्म दिन के 12 बजे बनाते हैं, कृष्ण जन्म जो है रात के 12 बजे बनाते हैं। पाई बहुत खास है क्योंकि चाहे आप भौतिक विज्ञान पढ़ें या गणित, सभी में यह आपको मिलेगा। वैसे तो पाई का सटीक मान 5वीं शताब्दी में ही हमारे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने बता दिया था, जिन्होंने शून्य का आविष्कार भी किया और दुनिया को आगे की गणनाएं दी। लेकिन आधुनिक युग में विलिया जोन्स ने 1706 में पाई का मान बताया, जो कि आर्यभट्ट जी द्वारा दिए गए मान के समान ही था। विश्व स्तर पर गणित का महत्व और सभी के जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका का जश्न मनाने के लिए यूनेस्को ने इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ द्वारा 14 मार्च 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, जिसकी थी

थी मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर अर्थात गणित हर जगह रखी गई थी। गणित ही एक ऐसा विषय है जो बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं को और अधिक बेहतर तरह से विकसित करता है बाकी विषयों की अपेक्षा। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का उद्देश्य और लक्ष्य भी यही है कि शिक्षा में गणित के महत्व के बारे में आम लोगों की समझ में सुधार लाना, उसे विकसित करना, उनके मन से गणित का भय निकालना। विकासशील देशों में विशेषकर लड़कियों और बच्चों पर ध्यान देते हुए उनकी गणितीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्षमता का निर्माण करना है। गणित हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज गणित के कारण ही असंभव से लगने वाली गणनाएं कर पाना मुमकिन है। गणित विषय को लेकर अधिकांश लोगों के मन में डर बना रहता है और यही डर वह बार बार अपने बच्चों के सामने भी जाने अनजाने व्यक्त करते रहते हैं, जिससे बच्चों के कोमल मन पर गहरा असर डालता है और वह भी बिना वजह गणित से डरने लगते हैं। चूंकि गणित मेरा प्रिय विषय रहा है और मैं गणित अध्यापन से जुड़ी हुई हूँ, मुझे अंकों संख्याओं के साथ खेलना बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, बच्चों को हमें उनकी उम्र के अनुसार खेल खेल में गणित सिखाना चाहिए। जैसे वर्ग बनाना है जिसकी चार भुजाएं बराबर है, वह वर्ग है। समान लंबाई की लाइनिंग आप उनसे कॉपी पे खिंचवाइए, साथ ही उसमें कलर भरने को कहिए, तो उनका मनोरंजन भी हो जाएगा और वो वर्ग बनाना भी सीख जाएंगे। यदि लाइन को छोटा बड़ा कर देते हैं तो वह चार लाइनों से बनी हुई आकृति जो है वो आयत बन जाएगी। आजकल तो बाजार में सभी तरह के खिलौने आते हैं जिसमें बच्चे प्लेट जोड़ जोड़ कर विभिन्न आकृतियां बनाते हैं। अधिकतर ये प्लेटें आयताकार या वर्गाकार होती हैं। गिनती उनके खिलौने गिनकर सिखाए जा सकते हैं। देखिए गणित कितना रोचक है। गणित में शून्य से लेकर नौ तक के अंक होते हैं बस, और चार संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, भाग और गुणा। इन सब का ही मेल है और कॉम्बिनेशन है कि ये संक्रियाओं का उचित कॉम्बिनेशन करके हम दुनिया भर की सारी जो समस्याएं हैं सारे गणित को सुलझा लेते हैं, सारी पहेलियों को सुलझा लेते हैं, सारी समस्याओं को हल हम उसमें से निकाल लेते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम आसपास सभी जगह गणित बिखरा पड़ा है। यदि ध्यान से देखें तो सुबह हिसाब किताब हमारा शुरू हो जाता है। सब्जी खरीदना है, कितने किलो लेना है, कितने पाव लेना है, कितने पैसे देना है, कितने लेना है, इन सब में गणित है। और सीधी सच्ची बात, जो हमारी आमदनी के स्रोत हैं वो जोड़ है और जो हमने खर्च किया वो घटाना है। कितना सरल और सहज है गणित। मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि गणित से न डरे, उसे अपना मित्र समझें और उसके प्रति अपना नजरिया बदलें। आप हर रोज उसका उपयोग करके दैनिक जीवन में सामान खरीदना, बेचना, इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। जब कोई पेंटर भी यदि वो पेंटिंग बना रहा है तो वो भी देखता है कि नाक किस अनुपात में मुझे बनाना है, आंखों का शेप देना है तो किस अनुपात में मुझे बड़ा करना है, छोटा करना, यहाँ पर भी गणित है। इसी तरह जीवन से जुड़े सारे क्षेत्रों में गणित काम करता है। अपने घर आसपास में हम नजर डालें तो देखें, समोसे में त्रिभुज दिखेगा, रोटी में वृत्त दिखने लगेगा और रोटी बेलने का बेलन तो स्वयं बेलनाकार आकृति का प्रतिनिधित्व करता है। लंबाई चौड़ाई बराबर हुई तो वर्ग बन गया, लंबाई चौड़ाई छोटी बड़ी हुई तो वो चार भुजाओं से बनने वाली आकृति आयत हो गई। यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं हैं तो वो घन बन गया और यदि अलग अलग हैं तो घनाप। देखिए कितना आसान है बच्चों को समझाना। बच्चों में जागरूकता लाने और रुचि विकसित करने के लिए महान गणितज्ञों की जीवनी से हमें उन्हें परिचित कराना चाहिए। हमारे भारत के ही कई महान गणितज्ञ हुए हैं, जैसे आर्यभट्ट जी, रामानुज और शकुंतला देवी जी, जो एक विलक्षण स्मरण शक्ति की धनी थी और महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र थी। उन्होंने इसके बारे में कहा है, गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आसपास सब कुछ गणित है, आपके आसपास सब कुछ संख्या है। शकुंतला देवी के जीवन पे तो शकुंतला देवी के नाम से ही फिल्म बनी है। इस फिल्म में हमें उनके पूरे जीवन की कहानी देखने को मिलती है। उनका पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। वह कभी स्कूल नहीं गई और न ही घर पर उन्होंने लिखना पढ़ना सीखा, न किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने 13 अंकों का गुणनफल कुछ सेकंड में कर दिया था और उन्हें कंप्यूटर महिला कहा जाता था। खास बात यह है कि यह कारनामा उन्होंने जब किया जब दुनिया का कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ही नहीं था, दुनिया जानती ही नहीं थी कि कंप्यूटर क्या होता है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि यदि कोई सामान्य सा व्यक्ति भी निर्धारित समय के लिए अर्थात यदि दिन में 8 घंटे लगातार 3 वर्षों तक किसी विशेष कार्य पर काम करता है, अभ्यास करता है, तो वो जीनियस हो जाता है। तो आइए हम भी अपने बच्चों के मन से आज डर निकालें।

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता दैनिक जीवन में गणित का महत्व। वार्ताकार थी वंदना मिश्रा। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च कार्यक्रम में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल है और इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक एकीकृत, सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
1: इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू भी हुआ। इसके तहत आगामी 3 वर्षों में पीएम केयर्स के माध्यम से प्रदेश को 13 एमआरआई मशीनें, 11 मेमोग्राफी मशीनें तथा 308 एआई सक्षम हैंडहेल्ड एक्सरे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य एवं निदान सेवाओं को उल्लेखनीय मजबूती मिलेगी तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ उनके संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। इस अभियान के संचालन में राजगढ़ जिले को भोपाल संभाग में प्रथम स्थान मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर के अंतर्गत भैंसवा माताजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद रोडमल नागर भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि जलगंगा संवर्धन अभियान की इस अल्पावधि में ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संबंधन

0: के कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले की बमोरी विधानसभा के ग्राम चक विश्वनगर स्थित भौरा में लगभग 278 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 220 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। यह महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र के लगभग 225 गांवों के 2.5 लाख से अधिक परिवारजनों को सुदृढ़ निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सशक्त समृद्ध एवं विकसित गुना के निर्माण हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत हैं।
1: जिस बमोरी में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस बमोरी में आज 220 केवी का सबस्टेशन मुंद्रा हनुमान में स्थापित हो रहा है 280 करोड़। मैं देश का ऊर्जा मंत्री रहा हूँ, उस जमाने में 200 केवी का सबस्टेशन मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलुरु यहाँ लगते थे। मोदी जी के जमाने में 220 केवी का सबस्टेशन मुंद्रा हनुमान में लग रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे, जिसमें खेती से जुड़े मॉडल और आधुनिक कृषि के तरीकों, मृदा प्रबंधन, फसल सुरक्षा, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहल प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल क्षति, गांवों और बुनियादी ढांचों की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए 12 जून से ये अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके तहत एक ग्राहक या एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नई दिल्ली में नोटरी नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक नया आवेदन मॉड्यूल लॉन्च किया। ये मॉड्यूल योग्य कानूनी पेशेवरों और अधिवक्ताओं को नोटरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम बनाता है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि विधिक मामलों का विभाग नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के अंतर्गत आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर इस मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से नीदरलैंड के मुंबई स्थित कौंसुल जनरल नबील ताउआती ने आज पुलिस मुख्यालय भोपाल में मुलाकात की। इस अवसर पर काउंसलेट जनरल के साथ मुंबई के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार कौस्तुभ परिहार तथा कृषि सलाहकार प्रसाद पारते भी उपस्थित रहे। भेंट के दौरान पुलिस महानिदेशक ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक पुलिसिंग तकनीकी नवाचार एवं नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार तथा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के मोतीसागर तालाब पर होमगार्ड जवानों का विशेष तैराकी और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आगामी 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इंदौर जिले के छोटी बेटमा स्थित विशिष्ट आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर में पीटीआई

के रिक्त पदों के लिए 6 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते आज डिंडौरी जिले के प्रवास पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे समनापुर और कुटेला क्षेत्र के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 जुलाई कर दिया गया है। झाबुआ में युवा संगम का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में किया जाएगा। बैतूल में हॉकी प्रतिभा खोज चयन ट्रायल में जिले के युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। और कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने निर्वाचन सदन स्थित ईवीएम वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम का त्रैमासिक निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इको सिस्टम में शामिल, कहा स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर।

भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इको सिस्टम में शामिल, कहा स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए कवि एवं साहित्यकार संतोष परिहार से काव्य पाठ।
1: समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं संतोष परिहार पावस ऋतु में वर्षा पर आधारित कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। उमस गर्मी से प्राकृतिक शीतलता प्रदान करने, आसमान से जमीन पर गिरती है बूंदे, बूंदे हमें क्या संदेश दे जाती है। प्रस्तुत है कविता बूंदे। ये जानती है बूंदे, ये जानती है बूंदे जीवन अंबर से गिर जाने का, ये जानती है बूंदे जीवन अंबर से गिर जाने का, प्रण लिया है मन में जन जन की प्यास बुझाने का, ये जानती है बूंदे जीवन अंबर से गिर जाने का, गर्मी से राहत देकर जग में हरियाली फैलाने का, वाष्प बनकर फिर अंबर में उड़ जाने का, ये जानती है बूंदे जीवन अंबर से गिर जाने का। बूंदे अंबर से गिरकर क्या संदेश देती है आपने सुना, काले कजरारे घटा टोप बादलों की क्या भूमिका होती है। प्रस्तुत कविता मेघा गरजे। धड़ाम धड़ाम धम मेघा गरजे, बिजली रानी नृत्य दिखाए, धड़ाम धड़ाम धम मेघा गरजे, बिजली रानी नृत्य दिखाए, मिलकर बूंदे बजाए मजीरे, देखो सावन बरसा जाए, कावड़िया जल भर भर लाए, कावड़िया जल भर भर लाए, शिव शंकर अभिषेक कराए, धड़ाम धड़ाम धम मेघा गरजे, बिजली रानी नृत्य दिखाए, धड़ाम धड़ाम धम मेघा गरजे, घटा टोप टम अंबर हो गया, घटा टोप टम अंबर हो गया, ऊपर वाला ढोल बजाए, सावन में मन पावन हो गया, सावन में मन पावन हो गया, चौपालों पर आला गाए, धड़ाम धड़ाम धम मेघा गरजे, बिजली रानी नृत्य दिखाए, छम्मा छम्मा छम बरसी बूंदे, छम्मा छम्मा छम बरसी बूंदे, नदिया रही सो सो बल खाए, ताल तलैया सब गुस्साए, झरने झर झर झरते जाए, धड़ाम धड़ाम धम मेघा गरजे, बिजली रानी नृत्य दिखाए। मेघों की गर्जन तर्जन के बाद क्या होता है, सावन भादों में झमाझम झड़ी लगाकर पानी बरसता है और हम कह उठते हैं।

ताल तलैया फसलों की हो गई पोबारा, पावस आया पावस आया पावस आया पानी बरसा, झुपड़िया से झाके हरिया कब उतरे मौसम का पारा, भी

पड़ गए बरसा पानी मुसल धारा, पावस आया पानी बरसा। बूंदे बरसती है, मेघा गरजते हैं, पावस आता है पानी बरसाता है। उसके बाद सकल धरा, वन्य पर्वत क्षेत्रों में क्या होता है, प्रस्तुत है कविता पावस के बाद। सावन बरसा भादो बरसा, सावन बरसा भादो बरसा, झूम झूम हरियाली छाई, सकल धरा के सघन वन में महक उठे तरुवर दल, मौसम में मादकताई, सागौन का बढ़ गया जोर, सकल वन में उसका शोर, हिलोरले पत्ते विशाल, छा गई लच्छेदार मोर, देख अंबिया गुस्साई, सकल धरा के सघन वन में झूम झूम हरियाली छाई, बबूल ने किया छोटे छोटे, बबूल ने किया छोटे छोटे, कन फूलों से स्वर्ण श्रृंगार, मौन खड़ा है अमलतास, अंजन लग रहा सुकुमार, नीम पे आई तरुणाई, सकल धरा के सघन वन में झूम झूम हरियाली छाई, चमक उठे पीपल के पत्ते, पलाश हो गया मखमली, आंवले का रूप निखरा।

0: चली छाई, गुल हुई गुल मोहर की लाली, उस पे छाई हरियाली, झर बेरी झूमी झाड़ी संग, अड्डू पर चढ़ अमर बेल मुस्काई, सकल धरा के सघन वन में झूम झूम हरियाली छाई, झर झर झरने लगे झरने बरसाती नदियों की कल कल, हरी भरी सुर मई वादी का गा रहे गुणगान, ताल तलैया लब लबाई, सकल धरा के सघन वन में झूम झूम हरियाली चाई, चहक उठे खगदल बहक उठी हिरणों की टोली, बंदर डोले डाल डाल प्रकृति ने धरती माँ को हरी चुनरिया पहनाई, सकल धरा के सघन वन में झूम झूम हरियाली छाई, नीलगिरी लगे दिव्य रजत सा मनमोहक सौरभ फैली, कलियां आ गई आंकड़े पर सीताफल लग रहा सुहाना, इमली खड़ी अलसाई, सकल धरा के सघन वन में झूम झूम हरियाली छाई। अंतिम है, महका कदम्ब राज भोग सा झुरमुठ में लगे बांस बतियाने, संतोष स्वर्ग सी लगे धराये मगर खजूर हटी लेके, मन पावस ऋतु न भाई, सकल धरा के सघन वन में झूम झूम हरियाली छाई, सावन बरसा भादो बरसा।
1: अभी आप सुन रहे थे विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत कवि एवं साहित्यकार संतोष परिहार से काव्य पाठ।

0: थोड़ा सा इंतजार। गुनगुनाते रहें और सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
2: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
1: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
2: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
3: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
4: मीठी मीठी निमाड़ की सुरीली धड़कन,
5: जहाँ होती है मीठी मीठी बातें और सुनाए जाते हैं प्यारे प्यारे गाने।
6: इश्क़ दी चाशनी, ओ मीठी मीठी चाशनी।
4: तो आप भी इसकी मिठास में खो जाएं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
6: ओ मीठी मीठी चाशनी।
7: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहर पल कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को दीपमाला का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए आशा भोसले के स्वर में ये गीत। वो लिखे शकील बदायूनी ने, संगीत रवि का, फिल्म है दो बदन।

लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार को। वो लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म है बुलंदी।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म है बरसात की एक रात।

लता मंगेशकर के गाए इस मधुर गीत के बाद लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, वो लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, फिल्म है एक नज़र

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया ये गीत। गीत लिखा आश्रय जयपुरी ने, संगीत रविंद्र जैन का, फिल्म है दो जासूस।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवेंद्र अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज

0: पटना का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की।

0: सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी।

0: लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत। निमाड़ी लोक संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए बद्री प्रसाद शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत।

0: पराग जी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो अब नया सत्र शुरू होने वाला है तो क्यों ना मैं भी अपना एक नया काम कर लूँ।
1: कौन सा काम?
0: मैं सोच रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लिया जाए।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो।
0: पर मैं अपने काम का प्रचार प्रसार कैसे करूँ?
1: कैसी बात कर रही हो, आकाशवाणी के माध्यम से करो।
0: हाँ, आकाशवाणी तो मैं रोज सुनती हूँ।
1: रोज सुनती हो तो उसपे विज्ञापन दे सकती हो, या फिर तुम किसी कार्यक्रम को भी प्रायोजित कर सकती हो।
0: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम?
1: जैसे हमारे श्रोता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अपनी प्रतिभा को भी अपनी बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
0: मतलब मैं अपने कोचिंग की विस्तृत जानकारी श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकती हूं।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें आप प्रायोजित कर सकती हो, और साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में अपनी संस्था के विज्ञापन भी दे सकती हो।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
1: तो कब जा रही हो आकाशवाणी खंडवा?
0: अभी।
2: आप सुनी रहे आज

0: नी मार की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोक संगीत। आज आप सुन रहे हैं बद्री प्रसाद शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे निमाड़ी लोक संगीत। आज आप सुन रहे थे बदी प्रसाद शर्मा और साथियों के गाए निमाड़ी लोक गीत। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीपमाला का प्यार भरा नमस्कार। और चलिए कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं आपके फरमाइश ईमेल से। बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, आसमा खातून अंसारी, राजेश डी अंसारी, असलम अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी। डुमराओं से डब्लू अंसारी, सोने अदीबा और वली मोहम्मद अंसारी। खंडवासी पसंद भेजिए ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे। सुपौल से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार, निराला और चिलना झा। तिलारा से प्रकाश पोहारकर, नर्मदा पोहारकर, सुजाता पोहारकर। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा। चंडीगढ़ से पसंद भेजिए राहुल खुराना, रजिता खुराना और केशु खुराना ने। भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। किशनगंज से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया। वटिंगखेड़ा से मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। नागर कोहरा से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत और आराध्या साहू। सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पल और विलिस डिकोस्टा। जाखोज से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक। मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग। श्रीगंगानगर से है मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका और ममता अरोड़ा। गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। सनावत से पसंद भेजिए दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश और मुस्कान मालाकार ने। मोताला से विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती गोरी और ओम कुमार सुरलकर। और इसी गीत को पसंद किया मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेन शर्मा, मेंडी, सौरभ शर्मा, साइना और निवान शर्मा ने। आप सभी सुनना चाहते हैं कलंक फिल्म का ये गीत।

0: अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और वैशाली महाड़े को। वो लिखित अमिताभ भट्टाचार्य ने, फिल्म थी कलंक और संगीत था इस गीत का प्रीतम ने दिया था।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीते गीत। कार्यक्रम का अगला गीत है अभिजीत और सारिका कपूर की आवाज़ में, संगीत आनंद मिलिंद का है, बोल लिखे समीर ने, फिल्म है कुर्बान। और इस गीत को पसंद भेजी है वारणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वी चौहान अंकिता और अनिकेत चौहान ने, महसोल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन प्रिंस इशरत अक्रम वसीम अक्रम रूबीना वसीम आरिस वसीम ममता रानी शर्मा पूनम कुमारी शर्मा अरान बाबू हमजा बाबू शालिया शाहीन नाजिया नूरी बच्चू और चीना शेख ने, जगराओं से कमल पाठक सुनील पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्य मल्होत्रा, धनोरी तेलीवाला से निशा सलमानी नौशाद आलिया और आयान बाबू, पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे सुनीता शिंदे यशराज ऋषि और शिंदे और कृष्णा घोड़के।

खंडवा से शालिया डावर, हलीमा डावर, जिकरा और आय डावर और हाइशा खत्री, धर्मपुरी से पसंद भेजिए मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री ने। भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम, पवन जरिए के संजीव डाबेराव, सनावत से मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद इसाक और बब्बू डब्बू, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली छत्री, राजकोट से जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, आदिपुर अंजार से जगदीश सोनार, कुंदन और रंजन सोनार, केदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, सनावत से यूनुस खत्री, सफ़ी खत्री, इतरीश खत्री, नूरू मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना, गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, नवापुरा कच्छ भुज से विजय कुमार और वैशाली शर्मा, और दिल्ली से इसी गीत को पसंद किया अजीम वकार और माहिरा अजीम ने। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत को सुनवाने के लिए पसंद भेजी है। अबू धाबी से शेख जियाउर रहमान ने, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी, खुशी खर्चे, वंदना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी ने। ग्राम दोलापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। कर्जत से इकबाल अहमद बागवान, शमीम अहमद, रफत अहमद, इमरान अहमद, रईस अहमद, अखलाक अहमद और अहमद मुंबईकर। खंडवा से विजय मोहबिया, कविता मोहबिया, विशाल, विवेक, सोनू मोनू, रानू, देवराज मोहबिया, सपना, शिवी, सलोनी, पेंटर बाबू, अनिल सोनी और सुदामा। सनावा से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार भोडाना। आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई देवांगन, दीपक कुमार और जयश्री देवांगन। सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग सुलोचना, चारवी और प्रणव सांवले। परभणी से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई। खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह बेस, रिया रोहन और अंगद ठाकुर। ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, ओम सेन, कुमारी सपना, धर्मेंद्र, मुकेश, ऋषि सेन, द्वारकाबाई सेन। इंदौर लिम्बोदी से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा बाई चौधरी। फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी। खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, ईशान सैनी और कार्तिक सैनी। खंडवा से ही संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सभी सुनना चाहते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक को। बोली के समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का, फिल्म है क्रांतिवीर।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत राम लक्ष्मण का है, फिल्म है मैंने प्यार किया, और इस गीत को सुनवाने के लिए पसंद भेजी है नरवेल से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर ने, बेगूसराय से अदीफा अफसरी, इस्माइल आज़ाद शाही, शाहू भाई वली आलम ने, भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर ने, खंडवा से रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, विनीता गंगराड़े, वामिका गंगराड़े, ग्राम जामली कला से माणक चंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, प्रियांशी राठौर, खंडवा से अब्दुल हमीद खलीफा, हबीब सलमानी।

रफीक सलमानी, जावेद खलीफा। नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शेह, राजेंद्र जी शाह। सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज अरनौ, कृतिका काव्यांशी और प्रभा कटारिया। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना से पसंद भेजी उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। बरका काना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, अफजल इब्राहिम। बीड से किशन सपकाल, आशा सपकाल, साईराज, सोनिया और विशाल सपकाल। खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी यादव, कामेश यादव, भारती यादव। बढ़वा से भारती कुशवाहा, मनीष कुशवाहा, पार्थ कुशवाहा, अणवी कुशवाहा। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन और नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, श्वेता, सुमित गवाणकर, ध्वनि गवाणकर। खंडवासी पसंद भेजिए प्रोफेसर कॉलोनी से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी ने। ग्राम बड़गांव माली से है अजय मालाकार, रीना, अनुज, अंश, अर्पिता, शशंक मालाकार, तमन्ना मालाकार, गरिमा और खुशी मालाकार ने। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके मीते की समाप्त करने की अनुमति दीजिए दीपमाला को। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: अभी आप सुन रहे थे आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीते गीत। FM बैंड 101.3

101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं, अब से लेकर सुबह के 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज़ों में प्रसून जोशी का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग।

0: दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ये दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, संसद की भूमिका तथा जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। 30 जून 1989 को अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। इसी अवसर की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की। लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है। संसद कानून बनाती है, सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है, राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करती है तथा जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाती है। एक सशक्त संसद ही पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितकारी शासन की आधारशिला भी होती है। संसद महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करती है तथा संवाद, सहमति और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाती है। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको गाना सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में पिंटू की पप्पी फिल्म से।
1: Beautiful,

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए भूमि त्रिवेदी और साथियों की आवाज़ों में कौशल मुनीर का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है रश्मि रॉकेट।

0: ऐसी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ

0: शकील आजमी
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए मीका सिंह की आवाज में शुभ मंगल ज्यादा सावधान। इस फिल्म का गाना लिखा है वायु ने और संगीतबद्ध किया है तनिष्क वायु ने।

0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लक्ष्मी फिल्म से, इसे गाया शशि और डीजे खुशी ने, गगन आहूजा के शब्द हैं और तर्ज बनाई है शशि डीजे खुशी ने।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन और हमारा गाना बन गया।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज।

0: भी होता था।
1: संगीतकार नौशाद।
2: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा ठहरो जी।

सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

काशी और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

0: प्यार वफा
1: कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊँगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा, बिल्कुल प्राण

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फ़ोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूज़िक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे, प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता हमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता हमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझने कम हो जाती हैं।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं हैं, लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, लीजिए प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बालाघाट जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम में हुए बदलाव का असर बालाघाट जिले में भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के कारण लोगों को राहत तो मिली है।

0: लेकिन तेज बारिश का अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में बालाघाट जिले में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। जिले में बीते 1 जून से 24 जून तक कुल 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। अब बात करते हैं विश्व सिकल सेल दिवस की। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय बालाघाट में मुस्कान ओपीडी के अंतर्गत विशेष जागरूकता एवं जांच कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें कुल 1899 लोगों की जांच की गई। इस वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस की थीम जीवन रक्षा के अंतर को समाप्त करना, सिकल सेल देखभाल में समानता सुनिश्चित करना रही। कार्यक्रम के दौरान 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की सिकल सेल की जांच की गई और गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिजनों, बच्चों, सिकल सेल पॉजिटिव मरीजों तथा आमजनों को रोग के प्रति जागरूक किया गया। बीते 21 जून को बालाघाट के मुलना स्टेडियम में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सांसद भारती पारधी की अध्यक्षता में सामूहिक योग में जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर मृणाल मीना, अधिकारी कर्मचारी सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और नगर के गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित ज्ञान भारतम मिशन के तहत बालाघाट जिले में प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की खोज, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है। अब बात करते हैं किसानों के कल्याण से जुड़ी खबर की। बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,36,130 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जिला स्तरीय रैंकिंग में बालाघाट जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2026 माह में बालाघाट जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लगातार 2 माह तक प्रदेश के शीर्ष 3 जिलों में स्थान बनाकर बालाघाट ने किसान कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है। अब बात करते हैं खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र की। विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने चित्रकला के माध्यम से योग, स्वास्थ्य और ओलंपिक मूल्यों का संदेश दिया। इस अवसर पर 35 खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सतीश शर्मा ने कहा कि कड़े परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ही भविष्य के ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार होंगे। अब बात करते हैं जिले में प्रशासनिक गतिविधियों की। भोपाल से मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बीते दिनों प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में बालाघाट जिले ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां दर्ज कर प्रदेश के अग्रणी जिलों में स्थान बनाया। इसी प्रकार टीबी रोगियों को पोषण किट वितरण में भी बालाघाट ने 100% उपलब्धि के साथ प्रदेश में पहला स्थान साझा किया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में भी बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पंजीयन में बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। बच्चों की अपार आईडी बनाने में भी बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अब बात साइबर जागरूकता की। बालाघाट जिले में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज ललित शाक्यवार, उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की उपस्थिति में बीते दिनों साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर आयोजित सेफ क्लिक 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ललित शाक्यवार ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। युवाओं को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण को लेकर एक अच्छी खबर है। पुलिस सेवा में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुलिस बैंड भर्ती की घोषणा की गई है। इस क्रम में जिला पुलिस बालाघाट द्वारा अमर शहीद आशीष शर्मा निशुल्क पुलिस बैंड प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। वर्तमान में इस प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 250 से अधिक युवा लाभान्वित हो रहे हैं। ये प्रशिक्षण केवल बालाघाट तक सीमित नहीं है, बल्कि बालाघाट सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य राज्यों के युवा भी यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर पुलिस बैंड भर्ती एवं रोजगार की दिशा में अपने सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर हैं। और अंत में बात दो बूंद जिंदगी की। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान चलाया जा रहा है, जहां 3,584 टीकाकरण कर्मी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी पूरी तत्परता के साथ सेवाएं दे रहे हैं। बालाघाट जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम लोकरंजनी। प्रस्तुति विशाखा सोनी की है।

0: लोक रंजनी।
1: लोक रंजनी कार्यक्रम में आज आपका साथ छे आपकी बहन विशाखा। सभी भाई बहन नकम हरी राम राम। भाई बहन होनी आप सभी अब मावनी की तैयारी नम लग्या होएगा। मावनी को समय नजदीक छे। अच्छा उत्पादन का लेना अच्छा न उन्नत किस्म का बीज न को चयन करो। आना साथ है वावनी समय पर कर लेनु चाहिए। समय पर वावनी करने का भी कई फायदा छे। एकासी हम का उत्पादन भी अच्छो मिले। यदि वावनी में चूकी जावाएं तो उत्पादन प्रभावित हो छे। भाई बहन होनी ई तो थी आपकी न हमारी थोड़ी सी बातचीत। न अब आपका इंतजार होएगा आपकी पसंद का फरमाइशी निमाड़ी लोकगीत न को तो शामिल कराएं आपका पत्र नख आना सुनी लेवाएं आपकी पसंद का फरमाइशी निमाड़ी लोकगीत। ये पहला निमाड़ी लोकगीत का लेना हमारा पास पत्र आया जिनका लिखना वाला छे शास्त्री नगर खंडवा से रमेश पंचोली बीनू देवी पंचोली प्रकाश उर्मिला दीपक नंदिनी निखिल पंचोली बड़ा आवार से तेजल नीलकंठ मीरा देवी शिवानी पिंकी न राधा बहरामपुर टेमा से तिलोकचंद वर्मा भागवत वर्मा सुभाष संतोष दिनेश वर्मा अभिषेक अनिल वर्मा सचिन श्वेता अंजलि सीमा आरोही वर्मा समर आर्यन नराज वर्मा कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली आदित्य अदिति शिवानी मीनूराज श्रीमाली भीकन गांव से संतोष सातले चंदन सातले सारिका शुभम रोहित शैलेंद्र कंचनबाई सातले ने इनका परिवार का सभी सदस्य आप सभी नन्ना पसंद करोज माधुरी शर्मा को गायो इनिमाड़ी लोकगीत।

अगला फरमाइशी माड़ी लोकगीत का लेना पत्राया जिनका लिखना वाला छे ग्राम कपास स्थल बड़वाहा से डोंगर सिंह सावनेर ने इनका परिवार का सभी सदस्य। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता, मुस्कान मालाकार न इनका परिवार का सभी सदस्य। शिवकोठी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन न इनका परिवार का सभी सदस्य। आप सभी इन्हें पसंद करियोज आनंद राम व साथीना को गायो ई सिंगाजी भजन।

अगला फरमाइशी मारी लोकगीत कालीन पत्र है जिनका लिखने वाला छे ग्राम रतनपुर झिरन्या से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद्र, आदित्य, गुनगुन ने इनका परिवार का सभी सदस्य। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू रोशनी, अजय गंगराड़े। मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, मन मानस, ज्योति ललित, अंतिम, कनिका पटेल ने इनका परिवार का सभी सदस्य। वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष, रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक खेरचे, संजना परी खेरचे, ललिता नारायण खेरचे। दतरेंगी से भागवत वर्मा, रिंगणी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी। आप सभी ने पसंद करियो धर्मेंद्र सरमंडल को गायो इनिमारी लोकगीत।

अगला फरमाइशी निमाड़ी लोकगीत का लेना पत्राया जिनका लिखना वाला छे खेड़ी से भैयालाल पटेल, नर्मदा पटेल, मंजुला पटेल, नीतीश पटेल इनका परिवार का सभी सदस्य। मोकल गांव से मनोज सोनी, अरविंद सोनी, सुभाष सोनी, श्वेता, शीतल, वर्षा, जियाना कुमकुम। ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू, दिव्यांश, सूरज कुमार ढाक से। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री। रामनगर कॉलोनी खंडवा से ज्योति मालविया, कनक मालविया, कृतिका मालविया, शुभम पटेल, भगवान पटेल ने इनका सभी साथी। आप सभी ने पसंद करो फतेह से परमार को गायो इनिमाड़ी लोकगीत।

अगला फरमाइशी वाली लोकगीत का लेना हमारा पास पत्र आया, जिनका लिखने वाला छे गणेश तले खंडवा से अनिल वर्मा, श्वेता वर्मा, प्रिया वर्मा ने इनका परिवार का सभी सदस्य। सनावत से विभा सोनी, धर्मेंद्र सोनी, मन वागीशा ने इनका परिवार का सभी सदस्य। गणेश तले खंडवा से मोहन मालाकार, महेश मालाकार, सुरेश मालाकार ने इनका परिवार का सभी सदस्य। आप सभी ने पसंद करियोज शीला गीते को गायो इनिमाड़ी लोकगीत।

0: लोक रंजनी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी, प्रस्तुति विशाखा सोनी की थी।
2: हमारे अगले कार्यक्रम के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।

0: और सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
2: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
1: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
2: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
3: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
4: मीठी मीठी निमाड़ की सुरीली धड़कन,
5: जहाँ होती है मीठी मीठी बातें और सुनाए जाते हैं प्यारे प्यारे गाने।
6: इश्क़ दी चाशनी, ओ मीठी मीठी चाशनी।
4: तो आप भी इसकी मिठास में खो जाएं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
6: ओ मीठी मीठी चाशनी।
7: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए अनुराधा पौडवाल की गायी कुछ सुगम संगीत रचनाएं।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम के आज के कलाकार हैं अनुराधा पोड़वाल।

0: आकाशवाणी खंडवा से अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं, अब से लेकर शाम के 5:30 तक आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में आप सुन रहे थे सुदर्शन फ़ाकिर का कलाम। और अब समाप्त फरमाइए प्रेम बर्बादानी का ये गीत नीना और राजेंद्र मेहता की आवाज़ों में।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मधुकर राजस्थानी का लिखा ये गीत, खयाम के संगीत निर्देशन में आवाज है मोहम्मद रफी की।

आइए अब सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में नूर नरवी का कलाम। यह है पंकज उदास की आवाज और नूर नरवी का कलाम।

ये थी राजेंद्र मेहता की आवाज़ गुलजार का कलाम, और अब सुनते हैं मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाज़ में इब्राहिम अश्क का कलाम।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। शायर हैं ताहिर फराज रामपुरी।

0: ये थी मिताली सिंह की आवाज और रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत।
1: ना जवानी नल चल दी।

0: इस गजल के साथ ही अब आज का रंगारंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से

0: इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि ये दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनेंगे यादों की महफिल।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं विधाता फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और किशोर कुमार का गाया हुआ पिघलता आसमान फिल्म का गाना। इन दीवार के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आशा भोसले और शब्बीर कुमार ने गाया है, वर्मा मलिक ने लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने धुन तैयार की है। फिल्म का नाम है राज तिलक।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुलशन बावरा का लिखा एक गीत आपने सुना रफू चक्कर फिल्म से, कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजें थीं। आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में घुंघरू फिल्म का ये गाना।

लीजिए, सुनिए इंदिवर का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ कलाकार फिल्म का गाना। आवाजें सुरेश वाडकर और साधना सरगम की हैं।

लीजिए अब सुनिए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। और अब आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश और कंचन की आवाज़ें। फिल्म का नाम है पाप और पुण्य।

नमस्कार, शुभ दोपहर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। आज की इबारत पढ़कर बहुत सारे संदेश आए हैं। अगर आपने अभी ये इबारत नहीं पढ़ी है तो फेसबुक पेज पर हमने जो इबारत पोस्ट की है वो आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। रिमझिम में भीगी समंदर की लहरें, उठे झूम के और घड़ी भर को ठहरे। बड़ी दूर से देख आवाज़ देती, कभी पाँव में डोर बनकर लिपटती। किनारे पे आए, मिले लौट जाए, कभी रेत पर लिखे नामों

को छूकर उधर जा निकलती, जहां पत्थरों पर धड़कते हैं दो दिल एक ही ताल पर, गले उनसे मिलकर उन्हें प्यार देकर कोई गीत गाती और फिर लौट जाती। तो आपको बताना है कि कौन से शब्द हैं आज के और उन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। बहुत सारे संदेशों में इन शब्दों का भी जिक्र है और गीतों की भी बात हुई है। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गाने लिस्ट से मैच हो रहे हैं आपकी लिस्ट से। इस मैचिंग के लिए बहुत सारे संदेशों का से गुजरना होगा और एक संदेश है, कहीं समंदर की लहरों की बातें हैं, कहीं समंदर के कुछ जो एक व्यंजनात्मक रूप से लिखी गई समंदर के बारे में कुछ पंक्तियां हैं। समंदर को जीवन से भी जोड़कर देखा गया है और समंदर के किनारे टहलने की भी कई अनुभव साझा किए गए हैं। बहरहाल ये जो संदेश है इसमें लहरों को सुरीला सफ़र से सजाया गया है, काव्यात्मक रूप से इस बारे में बात की गई है। समंदर की लहरें केवल पानी का उठना और गिरना नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट लय और ऊर्जा का नृत्य हैं। लहरों की अनवरत ध्वनि और निरंतरता किसी ध्यान जैसी अनुभूति देती है। लहरों में एक अद्भुत विरोधाभास होता है, ये जितनी प्रचंड और शक्तिशाली हो सकती हैं उतनी ही कोमल और शांत भी। जीवन में ठहराव नहीं निरंतरता का प्रतीक हैं ये लहरें, समुद्र का ये अनुशासन ही उसकी असली सुंदरता है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में कहा गया है कि शाद और अवसाद में अवसर दर्शाती और साजे दिलों की हसरतों तरंगों भरी दास्ता बयान करती इश्किया इबारत निसंदेह प्रेमी युगल के प्रेम विवाह के लिए संजीवनी स्वरूप है। लहरों के राजहंस रूपी प्रेमी किनारे रेत पर इंतजार करती प्रेयसी को लुभाने में कामयाब होगी। इश्किया लबोलुआब से सराबोर संगीत में सुरीला सफ़र का इंतज़ार रहेगा। तो भाई इंतज़ार ख़त्म हो गया है और हमें उम्मीद है कि आप अपने रेडियो के करीब ही हैं, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हों। एक और संदेश में कहा है कि समंदर की लहरों के माध्यम से प्रेमियों के दिलों के धड़कने और उनके आपसी जुड़ाव को दर्शाया गया है। समंदर की लहरों को इस तरह पेश किया गया है जैसे वे इंसानों की तरह आवाज़ देती हैं, प्यार करती हैं और गीत गाती हैं। यादों की अमिटता, रेत पर लिखे नामों को लहरों का छूना उस प्रेम और यादों की पवित्रता को दर्शाता है जिन्हें समंदर रूपी प्रकृति सहेज कर रखती है। लहरों का किनारे पर आना, मिलना और फिर लौट जाना जीवन और प्रेम में आने वाले मिलन और वियोग के प्राकृतिक चक्र है, चक्र का प्रतीक है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में शब्दों के का जिक्र किया गया है, उन शब्दों का, माई प्ले लिस्ट इज लॉन्गर टूडे होपिंग टू हैव मोर चांसेस, छूकर मेरे मन को रुक जा रात ठहर जा रहे चंदा, इस तरह के कुछ गीत इन्होंने साझा किए हैं। एक और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कहीं से ये गज़ल हमें भेजी है, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया ना करो, और बहुत खूबसूरत गज़ल है। हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी बात लिखकर भेजें तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप अपने साथ लहरें लाई हैं या फिर लहरों के संग आने वाली हैं और हम सब लहरों के साथ कहीं बहुत दूर, हम सबको लहरों के साथ कहीं बहुत दूर ले जाने वाली हैं, जहाँ हो सुकून के कुछ पल और हम जी सकें अपने मन के हिसाब से, जहाँ कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो, जो ना करना चाहे वो काम भी ना हो, बस साथ हो सिर्फ लहरें, फिर तो उनके साथ गुनगुनाना अपने आप ही हो जाएगा, नहीं भी आता होगा तो भी। क्या बात है भाई, ये बात तो है ही कि गीत संगीत और जब मन चाह साथ हो या अपने मन की बात हो तो फिर कितना खूबसूरत वक्त गुजरता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए हम गीतों की शुरुआत करते हैं। रिमझिम शब्द को लेकर बहुत सारे गीतों के कयास आए हैं, तो चलिए एक झलक उन सभी की सुन लेते हैं।

तो भाई ये कुछ गीत हैं जो हमने आपकी पसंद से चुने और उनके थोड़े थोड़े अंश आपको सुनवा दिए। हमने ये गीत चुना है और इसे भी बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद किया है। लेकिन पहले सवाल पूछ लेते हैं। एक तो आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, और जो सबसे पहला रिमझिम का गीत था उसे एक फीमेल वॉइस में भी आपने सुना होगा, तो बताइए कि वो किसकी आवाज़ में आपने सुना है। गायिका का नाम आपको बताना है जो सबसे पहला गीत आपने रिमझिम का सुना था।

बड़ा खूबसूरत तराना छेड़ देता है ये गीत। शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, बिल्कुल सही नाम हमारे श्रोताओं का आया। बहुत बहुत शुक्रिया काला बाजार, देवानंद, वहीदा रहमान और रिमझिम गिरे सावन बरसात का जो गाना हमने आपको सुनाया था, सबसे पहला गाना मंजिल फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज़ में। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से प्रॉम्प्ट जो जवाब आते हैं ना, उनमें बहुत कार्यक्रम की को एक गति मिल जाती है और इस गति के साथ जो संदेश आते हैं वो तो बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की भारत में एक अजीब सी तड़प भी है और अपनापन भी, लहरों के माध्यम से प्रेम मिलन विरह और प्रकृति के अद्भुत तालमेल को बयां किया गया है। शब्दों का चयन इतना कोमल और संगीतमय है कि पढ़ते ही मन शांत और रूहानी एहसास से भर जाता है। आंखों के सामने बारिश की बूंदों के बीच नाचती झूमती लहरों का दृश्य सजीव हो उठता है। लहरों का उठना ठहरना और फिर लौट जाना प्रकृति के शाश्वत नियम को दिखाता है। और एक और संदेश में कहा गया है कि कुछ लहरें समंदर से नहीं, यादों से उठती हैं। वे जब भी दिल के किनारे आती हैं अपने दूर गए साथी से मिला जाती हैं।

उनकी कई यादें याद दिलाकर। एक और संदेश में तो रिमझिम के तराने से लेकर बहुत सारे गीतों का जिक्र हो गया है। पिछली रात से रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात के आगमन से हमारे दिल के समंदर में भीगी भीगी ठंडी ठंडी लहर सी दौड़ रही है। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज सुरीले सफ़र के मिलन की बेला में। जैसे दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज़ एक है सांसों के तार पर, देश की सुरीली धड़कन के ताल पर। जब गीत गाया समंदर की लहरों ने, तब लहरों की तरह यादें टकराती हैं, तूफान उठाती हैं। रेत पर लिखे नाम भले ही मिट जाएं, दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक और संदेश में कहा गया है कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज समंदर की लहरों के साथ खेलते हैं, ऐसे गीतों का लुत्फ उठाते हैं जिसमें नायक नायिकाएं बेखौफ समंदर किनारे बेतहाशा दौड़ते लहरों के साथ मस्ती करते हैं। कभी रेत पर ताजमहल बनाते हैं तो कभी उसे मिटाकर फिर समंदर के उथले पानी में एक दूसरे को भिगोते लोटपोट हो जा रहे हैं। चलिए इसी से सवाल निकल आया, हमें बताइए कि क्या आपने कभी समंदर की सैर की है, किसी समंदर के किनारे घूमे हैं या वहाँ से सीपियाँ इकट्ठी की हैं? अगर ऐसा किया हो तो हमें ज़रूर बताएं। और कहाँ गए हैं, अलग अलग तटों पर, हमारे देश के अलग अलग समुद्री तट हैं जहाँ का पानी और जहाँ के समुद्री किनारे अलग अलग होते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका वो अनुभव कैसा रहा और कहाँ गए थे आप। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइए पर्दे पर कौन गा रहा है और संगीत किनका है।

भाई, कन्याकुमारी की बात की है जो कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। बहुत रोमांच होता है, ऐसी अनोखी दुनिया होती है। ये हमारे एक श्रोता ने बताया है उस सवाल के जवाब में जो हमने पूछा था कि समुद्र के किनारे आप कहाँ गए।

और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि मुंबई गए हैं, बाकी जवाबों का भी इंतज़ार हो रहा है। ज़रूर आप लोग कहीं घूमने गए हैं और जल्दी से बताइए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आपने जैसे ही रिमझिम के तराने छेड़े, वैसे ही हमारे यहाँ भी रिमझिम फुहारें पड़ने लगी हैं। मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। वाह, क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं, हम तो दीघा पश्चिम बंगाल गए थे। अब दूसरे सवाल की बारी। वैजयंती माला फिल्म मधुमती, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, ये जो गाना भी आपने सुना, सलील चौधरी का संगीत निर्देशन था, ये जवाब भी आ गया है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया है कि ना बाबा, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं जयपुर से ना अजमेर नाव में बैठी, ना जल महल, और पानी से दूर ही रहती हूँ। ओहो, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पानी का डर जो है वो बहुत सी चीज़ों से दूर रहना के लिए मजबूर कर देता है। आप ये बताइए कि समुद्र के किनारे बहने वाली हवाओं का भी एक बड़ा ख़ास अहम भूमिका होती है, तो क्या कभी उन हवाओं के साथ आपकी कुछ मुलाकात हुई है, जो तेज़ तेज़ हवाएं बहती हैं बारिश के समय में? अगर याद हो तो वो ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी जिन श्रोताओं ने नहीं बताया है कि वो किस समुद्र के किनारे टहले हैं या क्या बनाया है उन्होंने, जो घरौंदे बनते हैं, उन घरौंदों को कई बार बच्चे भी बनाते हैं, और आजकल तो बहुत सुंदर सा सेट भी मिलता है बच्चों के, उन घरौंदों को बनाने वाला, वो अगर सेट किसी बच्चे को गिफ्ट किया हो तो ये भी बताएं। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को सुनने के लिए आपको बताना होगा कि ये गाना किस फिल्म का है। संदेशों की बात करें तो हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक और रिमझिम का गाना याद दिला दिया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, लता मंगेशकर की आवाज़। वैसे तो रिमझिम शब्द वाला पहला सुना गीत मराठी है। रिमझिम पाउस पड़े सारखा, यमुनेला हुपूर चढ़े, पाणी च पाणी चहुड़के चहुकड़े। वाह, क्या बात है। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि रिमझिम के तराने की गीत मालाएं बुन रहे हैं और सभी मुखड़े उम्मीद के अनुसार, मंजिल ढूंढता गाना शुरू हुआ और काला बाजार पर रुक गया। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर की अपनी शांत गुफाएं हैं, गहरी शांत और एकांत, यद्यपि लहरों में उग्रता हो लेकिन उसके नीचे कोई शांति नहीं है। शायद कोई टाइपो एरर हुई है, अशांति लिखते हुए इन्होंने अशांति लिखना चाहा होगा। एक और श्रोता ने कहा है कि वैसे हम अपनी कुछ दिन पहले की एक बात बताते हैं आपके साथ साथ, सभी हंसेंगे सुनकर। तो हुआ यूं कि हमारी बेटी ने कुछ पंक्ति लिखकर अपनी एक पोस्ट डाली स्टेटस पर, समुद्र के किनारे की पिक के साथ। तो हमने उसे लाइक किया और लिखा कि हम लिखते तो कुछ ऐसा लिखते। तो जवाब में उसने लिखा, आप दिल से सोचती हैं और हम दिमाग से। फिर हमने लिखा, अरे नहीं, हम विविध भारती सुनते हैं ना। तो उसका रिप्लाई, सारा क्रेडिट मम्मी ने विविध भारती को दे दिया। फिर उसने ये बात सब दोस्तों को बताई, सब इतना हंसे ऑफिस में। तो सोचो, एक छोटी सी बात ने कितनों को हंसाया। बस यही तो हम चाहते हैं, सब खूब हंसे, वरना परेशानियां तो सबके साथ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि जीवन दर्शन समंदर की भांति ही गहरा ही नहीं अपितु रहस्यमय भी है। भले ही हम उसके अंदर अपने कौशल विकास से केबल बिछा कर पूरी दुनिया को ही मुट्ठी में भर लेने की होड़ में लगे हुए हैं, फिर भी ये समंदर अब भी रहस्यमय ही है, क्योंकि बहुतेरे तो किनारे के सीप घोंगों से ही खुश हो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक कुशल गोताखोर ही समंदर में गोते लगाते हुए उसमें छुपे जीवन दर्शन स्वरूप हीरे मोतियों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। आगे भी लिखा है, लेकिन यहीं से एक सवाल का जन्म होता है, और वो सवाल ये है कि इस लाइन पर एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है कि गोताखोर लंबी जब अंदर तक जाते हैं समुद्र में, तभी वो हीरे मोतियों को पा लेते हैं। तो एक दोहा है, अगर वो दोहा याद आ रहा हो तो वो भी हमें बताएं, और इस फिल्म का नाम बताएं जो गीत आप सुन रहे हैं।

बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। एक तोहफे की तरह आया ये जवाब। और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, इंदीवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, समंदर की भी बातें हमारे साथियों ने बताई हैं। वैसे एक सवाल आ रहा है मन में कि तोहफों को चुनते वक्त सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है जेब के अलावा? ये जो हमारे साथियों ने बताया समुद्र की यात्रा के बारे में, तो एक श्रोता कह रहे हैं कि हम तो समुद्र कनाडा में इन्होंने देखा था कई बार, और बहुत देर तक वहाँ बैठकर आती जाती लहर को देखा, जो बस यही कह रही थी काश हमारे साथी को कुछ जीवन और मिल जाता तो आज वो भी हमारे साथ इस प्यारे से नज़ारे को देख पाते। पर बड़ी मस्ती की छोटी सी अपनी परी के साथ छोटे छोटे पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर पानी में डाले और पानी में पैर डालकर बैठे रहे। कन्याकुमारी दीघा छूट गया लिखने में, ऐसा हमारे एक श्रोता कहते हैं। और मुंबई में तो अक्सर ही जाना होता है, वहाँ चौपाटी पर कई बार गए, चेन्नई में भी जाना हुआ, कन्याकुमारी भी गए हैं, ये हमारे एक और श्रोता ने बताया है। एक और श्रोता कह रही है कि वैसे तो हमारा शहर समुद्र के पास ही है, अक्सर हम वहाँ जाया करते हैं, डुमस बीच, सवाली बीच और गोवा दो बार गए, पर सबसे अलौकिक अनुभव हमें धनुषकोडी और कन्याकुमारी का रहा। दक्षिण भारत की यात्रा का अनुभव बेजोड़ था। क्या बात है। मुंबई के जुहू बीच दो तीन बार, अक्सा बीच और गोराई बीच का जिक्र किया है हमारे एक श्रोता ने। द्वारकाधीश और सोमनाथ गया हूँ समुन्दर के पास, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। एक श्रोता ने साझा किया है एक दुर्घटना होते होते बचने का जो अनुभव था इनका। हम लोग पूरा ग्रुप करीब 80 लोग उड़ीसा गए हुए थे, वहाँ पर समंदर की सैर करते हुए अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी बोट गोते खाने लगी। तभी एक अन्य बोट वाले ने तूफान के सामने अपनी बोट लगाकर हमारी बोट को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जुहू चौपाटी मरीन ड्राइव दोनों जगह पर दो तीन बार गई हूं, पर वहां का पानी जो अजीब सा पानी की जो अजीब सी गंध होती है मैं अपने को अच्छा महसूस नहीं कर पाती, इसलिए मैं पानी के किनारे पर जाना पसंद नहीं करती हूँ। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि पुरी के समुद्र में रस्सी पकड़कर लहरों का आनंद ले रहे थे, पर एक बहुत बड़ी लहर ने उठाकर पटक दिया और मोबाइल में पानी लग गया, थोड़ी सी लापरवाही की बड़ी सजा मिल गई। और समझौता फिल्म का ये गाना हमारे साथियों ने बताया, साथी अनिल धवन और शत्रुघ्न

ना का भी नाम का जिक्र हो गया। अब संदेशों की बात करें तो और भी कई संदेश आए हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई की कुछ बारिश आप ऑनलाइन ट्रांसफर करके हमारे शहर अजमेर में भेज दें प्लीज, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अभी यहाँ तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑफिस के बाहर तेज धूप है। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। चलिए जल्दी हम दुआ करते हैं बारिश आएगी। एक और श्रोता कह रहे हैं कि VBS सर्विस मुंबई में मानसून के आगमन के साथ पानी बरसना शुरू हो गया, ऐसे में समंदर किनारे हवाओं के साथ लहरें अटखेलियां करती नजर आ रही हैं। पहली रिमझिम बारिश में धरती को छूती हुई पानी की बूंदें मिट्टी की सूंधी खुशबू बिखेरती हैं, तो वहीं समंदर किनारे किसी चट्टान पर बैठकर बीती यादें मस्तिष्क को दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं। और बताया है कि समुद्री लहरों के आसपास फिल्माए गए गाने बच सकते हैं। एक और संदेश में कहा गया, शांत लहर में कुछ खामोशियां भी गीत होती हैं, उन्हें सुनने के लिए कान नहीं बस समझने वाला दिल होना चाहिए। क्या बात है। चलिए अब इसी बात पर अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और गीतकार कौन है।

सारी आवाजें, भावनाएं आवाज बनकर हम तक पहुंच गई हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो पानी से बड़ा डर लगता है, मैं तो तालाब में भी नहाता हूं तो साथ में बाल्टी या मग ले जाता हूं, समुद्र में जाना तो दूर की बात है। वैसे हमारे साथियों ने ये ज़रूर बता दिया जो हमने एक दोहे का जिक्र किया था कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। कबीर दास की का ये दोहा हमारे साथियों ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रही कि समंदर से बड़ा गहरा नाता है मेरा, क्योंकि समंदर के काफ़ी नज़दीक रहती हूँ। अपनी हर खुशी के पल में समंदर के किनारे पहुँच जाते हैं, टहलना हो तो भी वहीं जाते हैं। लहरों से अपनी दोस्ती है, समंदर की हवाओं से यारी है अपनी। क्या बात है, वैसे बहुत बातें करती हैं हवाएँ जब आप समंदर के किनारे हों। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गुजरात के दमन दीव बीच और सोमनाथ विजाग बीच, चेन्नई के मरीना बीच और रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी केरला के कोवलम बीच की सैर करके आई हूँ, पर जो चौपाटी की बात है वो सबसे निराली है क्योंकि उसमें बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया है कि रेत पर नाम लिखने का किस्सा, कि बचपन इनका मुंबई में ही गुजरा था। समुद्र से गहरा लगाव है, जब भी हम मुंबई आते हैं तो जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी या अन्य बीचेस में ज़रूर जाते हैं। धर्मपत्नी जब बच्चों के साथ होती हैं तो मैं चुपके से हर बार रेत पर दिल का शेप बनाता हूँ, धर्मपत्नी का नाम लिखकर आई लव यू भी लिखता हूँ और सबको बुलाता हूँ, तो धर्मपत्नी और बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरा तोहफा होता है और वहाँ का वीडियो भी सेव करके रखता हूँ। हाँ, हम यही बात कहने वाले थे कि ऐसे नज़ारों की तो फ़ोटो तुरंत खींच लेनी चाहिए। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि मैं वो खुश नसीब हूँ जो समंदर के किनारे रहती हूँ। मेरा बेटा रोज़ शाम को खिलौने लेकर रेती में खेल खेल के खेलते खेलते बड़ा हुआ है। मैं भी सीपियाँ इकट्ठा करके उनसे अलग अलग डेकोरेटिव चीज़ें बनाती थी, लेकिन अब समंदर किनारे बहुत गंदगी रहती है, सीपियाँ मिलना भी बंद हो गया है। सच में ये एक बहुत ही दुखद बात है, और इसलिए समंदर को साफ रखें। अगर समंदर के किनारे आप जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई चेन्नई जगन्नाथपुरी रामेश्वरम कन्याकुमारी जाना हुआ, हर बार का रोमांच अलग अलग रहा। मेरी बिटिया का बेटा पुरी में पिछले साल हमारे साथ था, उसके साथ समंदर के किनारे लहरों से खेलते खेलते वो अचानक किसी लहर के साथ बह निकला। बस थोड़ी दूर जाते ही हमने लपक कर उसे पकड़ लिया, वो तो मज़े लेता रहा पर हम सबके तो हाथ पैर जम से गए थे। कन्याकुमारी में सनराइज़ की वो झलक का अनुभव इतना सुंदर और आत्मिक अनुभव से भरा हुआ है, वो नज़ारा वीडियो में आज तक कैद है, जिसे हम यदा कदा देखते रहते हैं। एक गीत सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ, तू ही सागर है तू ही किनारा। और अब वो सवाल जो हमने पूछा था, प्रेम गीत फिल्म का गाना अनीता रास का जिक्र किया, इंदीवर का लिखा हुआ ये गीत था, ये भी हमारे साथियों ने बता दिया। और अब हम अगले गाने की तरफ चलें, उसके पहले एक संदेश है। प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से सहचर हैं, जब रिमझिम बारिश की बूंदें समंदर की लहरों पर पड़ती हैं तो मानो बिछड़े हुए प्रेमियों का मिलन हो रहा हो। यह दृश्य और अदृश्य का मिलना मानव मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस माहौल में मनुष्य के भीतर की तार्किकता मौन हो जाती है और संवेदनशीलता जागृत हो जाती है। क्या बात है। एक और संदेश में कहा है कि सुख का सुंदर चैतन्य आत्मा है, उसमें से आनंद की तरंगें उठती हैं, खुशी की लहरें उठती हैं और फिर उसी चैतन्य समुद्र में समाती भी हैं। एक और श्रोता ने कविता साझा की है, कहीं पढ़ी हुई ये कविता साझा की है इन्होंने। बादल बरसे धुल गई मन पर बैठी धूल, सब कुछ अपने हो गए समंदर नाव और मस्तूल, खिली जुलाई खुल गया बारिश का स्कूल, बस्ता लेकर सज रहे गुलमोहर के फूल। क्या बात है। तो चलिए अब अगले गीत की बारी है, बताइए कि गीत संगीत किनका है और फिल्म में कौन से कलाकार हैं।

भाई हमारे श्रोताओं ने शशि कपूर और मुमताज का तो जिक्र किया, चोर मचाए शोर का नाम भी बता दिया, लेकिन गीत संगीत नहीं बताया। चलिए हम बता देते हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। और एक श्रोता ने बताया है कि चेन्नई के मरीना बीच की वे यादें केवल एक शहर की याद नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों की धरोहर हैं जिन्हें याद करके आज भी मन मुस्कुरा उठता है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि एक बार गोवा गए थे तो उनका फ़ोन जो था पानी में गिर गया और उसके बाद सैंड में दब गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला, इनका ट्रिप ख़राब हो गया। वो वैसे बहुत एहतियात के साथ इस दौरान रहना पड़ता है, समुंदर कई बार आपके साथ अटखेलियां करते करते कुछ ऐसा कर जाता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। एक और श्रोता ने बताया कि भोपाल में आज सुबह से ही बादल और हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, मौसम बहुत सुहाना है। कभी बरसात के मौसम में आप यहाँ आएँ तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। क्या बात है, हम दुआ करेंगे कि हम ज़रूर आएँ। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में बारिश हो गई, कल रात 10:30 बजे के बाद शुरू हुई, सुबह 10 बजे तक जारी थी, लेकिन मैं राजस्थान में हूँ, अभी जमकर बारिश नहीं हुई। एक और श्रोता ने अंडमान निकोबार जाते हुए बे ऑफ बंगाल समंदर हवाई जहाज़ से 2.5 घंटे का सफ़र पूरा किया, ये बताया है, नीचे देखो तो नीला समंदर था, मन में डर लग रहा था लेकिन थ्रिल भी लग रहा था। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप लोग मुंबई में पानी की बारिश से भीग रहे हैं, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बनारस में भी पानी से भीग रहे हैं लेकिन सेल्फ सर्विस पसीने से, दुआ कीजिए जी। बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये बादल पहुँचें। मेघदूतों को के बारे में आपने सुना है ना, हमने मेघदूत से कह दिया है कि जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों तक पहुँचें। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक और गोवा के समुद्र तटों को छोड़कर शेष सभी समुद्र तटों पर हो आए हैं, यहाँ तक कि गंगा सागर भी हो आए हैं, क्या बात है। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि अभी इन्होंने वृंदावन की यात्रा की और यमुना की सैर की, सागर के साथ पूरा भारत देखा, दादर की चौपाटी याद आती है। अच्छा, वैसे

समुद्र जो है वो कई जगह बड़ा रिझाता है और कई जगह चेतावनी भी देता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक पर तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था। और एक और श्रोता ने बताया कि हमारे शहर कटक से पूरी नज़दीक होने के कारण अक्सर जब मूड किया चल दिए समंदर की सैर को। क्या बात है। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस नायिका पर फिल्माया गया है।

हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हेर आई शब्द का मतलब बुंदेलखंडी में ढूंढ आई, वैसे हेराई यहाँ पर प्रयोग हुआ है खो आई। और हमारे श्रोताओं ने तुरंत जवाब दिया कि अभिमान फिल्म का गाना नायिका जया भादुड़ी, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मजरू दादा की रचना, सचिन दा का संगीत, ऐसा हमारे एक और साथी बता रहे हैं। और मुंबई में अरब सागर पर बना हुआ सीलिंग देखने जाना है एक श्रोता की ये ख्वाहिश है, और उनकी ये ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी हो, हम तो यही दुआ करेंगे। एक श्रोता ने बताया है कि हम लोग समंदर के किनारे हमने काम भी किया है और अच्छा घूमे भी हैं। एक बार नीलोफर तूफान भी आया था, दो बार रहा, दोनों बार तूफान था, एक तीन चार लगातार लाइट भी नहीं थी, फिर भी आज भी किनारे रहने की बहुत इच्छुक हूँ। एक और श्रोता ने एक

दोहा साझा किया है। समुद्र तट के वर्णन के बारे में रामचरितमानस का दोहा है, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। समुद्र के ये 10 नाम हैं जो वाकई बड़ी खूबसूरती से तुलसीदास जी ने पिरोए हैं इस दोहे में। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि बदलते मौसम में जब रिमझिम की बूंदें बरसती हैं तो रेत पर लिखे वो अधूरे नाम भी भीग जाते हैं, लेकिन जहां समंदर की लहरें इन पथरीली चट्टानों से टकराती हैं वहां आज भी दो दिल एक ही ताल पर धड़कते हैं। मानो कह रही हूं कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। एक और श्रोता ने कहा है कि एक सुंदर स्वप्निल काव्य शिल्प यानी आज की इबारत समुद्र की लहरों पर जो बिखरा रही है रिमझिम की दौलत, क्या बात है। कल कल फेनिल सागर लहरें किनारे को जो छुएं धड़कते प्रेमी दो दिलों पर प्रणय रस वो छिटकाएं, आते जाते मधुर सुरीले प्रेम गीत वो गुनगुनाएं। और कुछ गाने भी इन्होंने साझा किए हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें। कुछ दूर क्षितिज में उठकर किनारों को छूकर ये बिखर जाती हैं, हार नहीं मानती, बस एक बार एक नया हौसला लेकर आती हैं। कभी थपेड़ों से चुभती हैं तो कभी मखमली स्पर्श सी हो जाती हैं। लहरें जिंदगी के सफर में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। हर लहर हमें ये बताती है कि गिरना तो बस उठने की तैयारी है, ठहरना नहीं, निरंतर बहते जाना ही इस बहते हुए जीवन की बाजी है। क्या बात है। और अब ये गीत सुनिए और बताइए स्वर किनका है।

लता जी और भूपेंद्र सिंह, ये हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। फिल्म किनारा बहुत गंभीर फिल्म और बहुत सारे श्रोताओं ने जिक्र किया है। लता दीदी बिल्कुल सही, इनकी आवाज़ ही पहचान है। और अभिमान फिल्म के गाने के लिए भी जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, एस डी बर्मन का जिक्र हुआ है। संदेश बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि मुझे सारे संदेश कैसे पढ़ने होंगे। सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें, कभी शांत कभी उग्र, जैसे ज़िंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि आज दरिया समंदर नदियों की उनके अविरत बहती लहरों का जिक्र होगा, बिना भीगे मन को प्रसन्न करने वाली लहरों का वो अनहद संगीत शोरगुल में भी कर्णप्रिय लगता है। मैं घंटों तक समंदर के किनारों से चलता हुआ लहरों का आनंद लेता हूँ, थकान मिट जाती है। शाम को ढलते हुए सूरज की किरणों का दृश्य मनोहर होता है। और इन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर परम चेतना है, जिसमें बहुत गंभीर स्थायित्व और गहराई है और उसकी गहराई ज्ञान का प्रतीक है। लहरें चंचलता, भाव और उमंग को दर्शाती हैं, जो कुछ कुछ अहंकार का रूप लगती हैं। मानो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने ही सागर का निर्माण किया है, यथार्थ में तो वो सागर का अंश मात्र ही हैं। काफ़ी गहरा संदेश है ये। और अब ये गीत सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के मित्र की भूमिका किन्होंने निभाई है।

हमारे श्रोताओं ने कहा है, जवाब बिल्कुल सही दिया है। अमिताभ बच्चन के मित्र हैं अमजद खान, किशन और बिशन। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि कॉलेज काल की ये फिल्म है। एक और श्रोता ने कहा है कि किशन चाचा के अमजद खान ने ये गीत गाना, याराना के संगीत राजेश रोशन का संगीत, इन्होंने ये लिखा है। और एक और श्रोता ने अमजद खान उर्फ गब्बर सिंह को याद किया है। एक संदेश है कि आज सोशल मीडिया दिवस है। सोशल मीडिया ऐसा मंच जहाँ व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से विचार रख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। हमें चलिए आपके विचारों के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम का ये सफ़र तय किया, सुरीला सफ़र। और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर दे रहे हैं विराम। तो दीजिए राजुल को इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

0: शौक, शौक बड़ी चीज होती है ना? जो मन करे वो कर लेना, क्या यही शौक है? नहीं, जो मन को अच्छा लगे वही कर लेना, ये शौक है? ये भी गलत है। सही तो तब है जब हम वो काम करें जिससे हमारे मन को खुशी मिले और करते करते मन में आह्लाद यानी बहुत सारी प्रसन्नता आ जाए, उसे ही कहेंगे शौक। अब शौक जो है उसका मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। शौक वो कार्य है जो अपनी खुशी, रुचि और मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। अब कई लोग होते हैं जो चित्रकारी करते समय कहीं खो ही जाते हैं। कई बार आवाज देने के बाद ही वो उस ओर ध्यान देते हैं। कई बार कोई खेल खेल रहा होता है, उसका ध्यान ही नहीं होता। कोई गाना गा रहा होता है, उसमें ही खो जाता है। और कोई तो किताबें पढ़ते पढ़ते एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। नृत्य करने वाला अपने जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है, और बागवानी करते करते तो कोई फूलों के साथ हंसना और बोलना शुरू कर देता है। शौक जीवन को आनंदमय, उत्साहपूर्ण बनाते हैं। और आज का जीवन कितना व्यस्त है, कितने तनावपूर्ण जीवन में जी रहे हैं, तो ऐसे में जो शौक है ना, वो आपको ताजगी देते हैं और शांति प्रदान करते हैं। और इसी शौक के साथ में हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं।
1: पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा, शराब,
2: तो फिर
1: हमको तो नशा।

0: शेख चिल्ली का ये ख्वाब, हर एक जर्रे की ये जुर्रत, छूना चाहे आफताब।
1: किबला खादिम पे न कीजिए इस कदर गुस्सा फिजूल, मैं हूँ आशिक इश्क में, मरना भी है मुझको कबूल।
0: तो मरेगा?
1: हाँ जी मरेगा।
0: ये जो कहेगी करेगा?
1: हाँ जी करेगा करेगा।

0: नहीं बाप कहूंगा।
1: What?
0: ये जो कहे मैं भी कहूँ कांटे को गुलाब, कांटे को गुलाब। अरे हमको तो नशा

0: जिंदा।
1: शौक कब आता है, कहां से आता है और कैसे आता है, ये प्रश्न सबके मन में होते हैं। कभी कोई कहता है कि पिछले जन्म में यही काम करते रहे होगे, इसीलिए तो इस जन्म में उस चीज का शौक है। पर ऐसा नहीं है, शौक अलग ही चीज है। बस वो काम करते करते मन को सुकून मिल जाए और जिस काम को भी कर रहे हैं वो करते करते आत्मिक शांति मिल जाए, शायद इसे ही शौक कहेंगे। और ये जो शौक है इसके कई सारे फायदे हैं। मानसिक तनाव कम होता है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम करने का मन नहीं है, परंतु जबरन या आवश्यकता अनुसार उसे करना पड़ता है। और करते करते, लगातार उस कार्य को करते करते जब बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ी देर, किंचित समय के लिए ही अपने शौक को पूरा करना शायद मन को शांति ही दे दे, और फिर से नई ऊर्जा के साथ हम वो कार्य कर सकते हैं जो करने में हमें बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है। या आज के ज़माने में मोबाइल इंटरनेट पर रहने की जगह कोई व्यक्ति अपने शौक के काम करके अपना समय बचा सकता है और अच्छे कार्यों में लगा लेता है, और व्यक्तित्व का विकास भी होता है।

एक और बात मन में आती है कि यदि किसी व्यक्ति ने शौक को ही पेशा बना लिया, जैसे बचपन से कोई गाना गाना चाहता था और वो गायक बन गया, जैसे किसी को बातें करने का शौक था और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताने लगा, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे चित्रकारी का शौक था और उसने उसे ही अपना शौक, उस शौक को ही अपना पेशा बना लिया और निकल पड़ा इस दुनिया के उस युद्ध में जहां से उसे कमाना है पैसा भी और भोजन भी, तो इससे फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है? तो हालांकि इस बात से तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपने अपने शौक को ही पेशा बना लिया तो और अधिक मेहनत लगन से आप काम करेंगे, उसमें नई नई आवश्यकताएं खोजेंगे, नए नए अनुसंधान करेंगे, काम में खुशी और संतोष मिलेगा, व्यक्ति अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाएगा, तनाव तो बढ़ेगा ही नहीं, सफलता और प्रसिद्धि भी मिल जाएगी और आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ में होगी मानसिक संतुष्टि भी। तो कभी अगर मौका मिले अपने शौक को अपना व्यापार या अपना व्यवसाय बनाने का तो जरूर बना लीजिए।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने नागरिकों से एकता के साथ आगे बढ़ने और भारतवर्ष के सभी लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद कल वे अनंतपुरम जाएंगी, जहां आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री गौतम टिटवाल और सांसद रोड बलनागर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री दूध तलैया में गंगा पूजन, गौ पूजन और पौधरोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का आज समापन हो रहा है, जिसमें अभियान के तहत 3.5 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। जिला स्तरीय समारोहों में सांसद गण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंददेव गिरि महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डेलिट उपाधि से सम्मानित किया गया। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीडी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों को कक्षा के अनुसार 1000 रूपये से लेकर 25000 रूपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब शिष्यवृत्ति की दरें हर साल मार्च के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होंगी और जुलाई में छात्रावास आश्रम शुरू होने से पहले लागू होंगी। नई दरों के अनुसार छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले बालक विद्यार्थियों को 1720 रूपये प्रतिमाह और बालिका विद्यार्थियों को 1710 रूपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति

अनुमति दी जाएगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 जुलाई से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर के निर्देशन में रोजगार मेले का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में होगा। कटनी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण के तहत कल ईवीएम वेयरहाउस स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। सेफ क्लिक अभियान के तहत आगरमालवा जिले के कल 6वें दिन जिला पुलिस द्वारा बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटर्स में व्यापक साइबर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। शिवपुरी जिले में सहकारिता और जागरूकता तथा संकल्प सप्ताह का शुभारंभ कल जिला सहकारी संघ कार्यालय में आयोजित हुआ और खंडवा वन मंडल की गुंडी रेंज के ग्राम आमा खुचरी में वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने लगभग 105 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन

0: पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा, मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग

0: समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति

0: 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हुल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हुल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हुल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हुल का बिगुल फूंका गया था। क्रांति

0: व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं महल फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: फिल्म तपस्या का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ, एमजी हशमत के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के

0: धार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये सदाबहार नगमा। राजा मेहंदी अली खान के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर।

0: और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वासना फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

इस गीत के साथ ही अब आज का सदा बहार नगमे कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: सखी सहेली
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजुल जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल है राजुल जी?
1: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना, ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है, बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती है।
1: तो ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे,
3: बस इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि

0: तार का फल मीठा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
0: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें अपने अपने साथ शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो बुज़ुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है। साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, तो बातें हल्की फुल्की, तो इसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी हैं, पर उन्होंने आम तौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है। पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है? कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी, कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है,
1: हाँ
0: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक मम्मी
1: एक
0: के
1: एक संदेश मैंने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
0: हाँ, तो
1: तो
0: ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो
1: अरे
0: जाते
1: कुछ
0: हैं।
1: बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं,
0: हाँ
1: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं, उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो
0: तो उनके
1: पता चला कि
0: खिलौने में।
1: खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
0: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है, सिक्का
1: हाँ
0: निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिखकर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को। और साथ ही मोहरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना।
1: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम पानी पानी हो जाते
0: माता
1: हैं।
0: पिता पानी पानी हो जाओ, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते
1: पोल
0: हैं
1: खोल देते हैं, सही बात है। वैसे ये सब जो बातें होती हैं ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
0: तो मजा
1: तो
0: आ जाता है।
1: मजा आ जाता है।
0: सुनते हैं गीत।

0: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते हैं।
1: यानी झारखंड पहुंच गए आप।
0: हाँ।
1: तो झारखंड से है अदिति गुप्ता, जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने महामारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, महामारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते,
0: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना। एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली हैं अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
1: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को, यानी बच्चियों को, ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, तो उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
0: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
1: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
0: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की,
1: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
0: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
1: अब सरल भाषा बच्चों के लिए, यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या
0: होगी, ये बहुत अच्छी पहल है
1: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर, बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
0: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने

0: के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
1: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो BBC की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रहीं।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज़ उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी।
0: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है
1: बेटे और,
0: हाँ, वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
1: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे
1: जी,
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे। तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी, जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की ज़रूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रोज नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह है उसे भी समय समय पर बदलना।
0: और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गांव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा, उसके अंदर जो शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई, अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती हैं,
0: प्रमाणित करती हैं कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं हैं या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी
1: उस
0: होता है,
1: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो

0: महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
1: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
0: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं। देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम।
1: जाया करो ट्यूशन
0: हाँ,
1: स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाए ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी ही कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। ये आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी
0: अरे
1: समझ।
0: बाप रे।
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण में हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज़ उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा।
0: अरे
1: मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता है मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है
0: हाँ, तो इनके मतलब इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी वो 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को पोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस ना चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे
0: हाँ, और
1: चलाएंगे।
0: कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है,
1: हाँ
0: ये पता नहीं अभी ये

0: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे चलाएंगे। हाँ, हाँ।
1: और कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है,
0: हाँ
1: ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे
0: नहीं। और उन्हें ऐसा लगता ना कि पापा के पास में बाइक है या कार है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे हैं।
1: बिल्कुल।
0: एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था, छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौना बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं। उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
1: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
0: वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार VCR के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए। अब VCR चलना बंद हो गया। हाँ। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
1: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
0: नाम नहीं लेती
1: और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
0: सुनते हैं गीत।
2: ओ मेरी ओ मेरी ओ

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद.
1: कार्यक्रम है सखी सहेली. और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी. 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा. पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी. वो भी झटका अलग से लगा था. साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसमें सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: दिया.
1: ये
0: बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है. एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे. वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं. उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उससे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया. घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था. तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था. जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी. तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया.
1: कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था. एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे. हमने बेल बजा दिया. फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा. यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था. उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना, पंचेश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े.
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारतें हैं. और बच्चों की ये जो मासूम शरारतें होती हैं इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं. तो बस

0: नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा बराबर कर देता था। उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: बना
1: जी।
0: तो भाई ये कुछ
1: यानी उन्हें रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे वो एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते हैं ना उससे दीवाले गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं, पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
0: वो लगा सकते हैं,
1: वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे
0: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर आते हैं वो लगा दे और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहे कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती है,
1: बहुत होती,
0: तो बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते हैं बच्चे,
0: या छोटे भाई बहनों के काट देते हैं,
1: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना चाहिए,
0: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है, नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
1: गाने में है।

सोनाली, देखिए शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था।

0: उसमें किसी को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की ज़रूरत है। और पुराने ज़माने में सब एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नज़र आ रही है। एक साथी लिखते हैं कि बुज़ुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
0: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमज़ोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
1: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है, आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट, आई लव रेडियो सिंस माई चाइल्डहुड, विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
0: क्या बात है
1: भाई, इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं, हाँ डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है
0: जी।
1: और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता, बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता है।
0: पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी
1: दोनों
0: चाहिए,
1: दोनों तरफ से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
0: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है,
1: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: सुनते हैं गीत।

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: हाँ, सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई।
0: ये सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं,
1: पोल खोल।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं हैं, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं।
0: सब पोल खोल दी
1: अंदर से पापा ने सुना, अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए शर्म से।
0: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब यही समझा कि हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
1: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
0: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है, जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माएं कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
1: सब खा लिया।
0: तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे, हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
1: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
0: हाँ, खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज

0: पसंद आ रही है। जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, मान लीजिए एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गए, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है वो पूरा हो गया।
1: और जैसे पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने की भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, घर वालों ने किसी ने देख लिया
0: तो पानी पानी हो गए।
1: तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए है ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
0: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, वो तो ऑफिस में देते हैं, पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
1: सचमुच, और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
0: फिर से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे,
1: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख कर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क,
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़,
2: एक टुकड़ा दुख का अंदर अंदर लमसा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
3: बेखबर दोस्तों, नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है,

0: जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बां देखता है। शकील आज़मी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी, और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
0: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
1: हाँ,
0: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
1: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
0: तो मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
1: मुल्क का गाना आप वो सुनाएं, पिया समाए।
0: जी,
1: बहुत अच्छा गाना है,
0: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
1: हाँ,
0: कव्वाली है।
1: यस यस,
0: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
1: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
0: जी
1: में।
0: बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
1: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
0: जी,
1: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी।
0: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
1: जिक्र किया जाए,
0: दर्ज होती है आज के समय में।
1: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
0: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फख्र महसूस होता था कि शकील आज़मी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं।
1: बहुत शुक्रिया।
0: तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान हाँ, खुराना हाँ, ने गाया भी है।
1: जी हाँ, जी हाँ, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप
0: जी।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: आर्टिकल 15 से,
0: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
1: उस गाने की कहानी ये है के
0: कोई दिलचस्प बात हो तो
1: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ।
0: हाँ।
1: आप यूँ समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
0: पड़ा है इजाजत फिल्म
1: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
0: अरे क्या बात है।
1: हाँ, उल्टा मतलब के
0: तो, सामान देना है।
1: हाँ, वो कह रहे कि वो कह रहे लौटा दो।
0: हाँ,
1: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
0: हाँ,
1: ठीक है,
0: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर।
1: हाँ, तो उसमें जो गाना है। हाँ, वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है, है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मोमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
1: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो।
0: हाँ।
1: लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ, वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना इंतजारी
0: जी।
1: हाँ,
0: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
1: हाँ, इसी तरह से बनी वो के आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
0: क्या बात है, वाह।
1: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
0: वाह वाह, बहुत सुंदर
1: है ना।
0: तो
1: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी।
0: हाँ,
1: उसमें कुछ खुमारी।
0: हाँ,
1: राइमिंग की लाइन थी।
0: हाँ,
1: तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं, तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारे

0: जो मुल्क है ना वो बहुत विशाल, बहुत
1: विविध
0: बड़ा मुल्क
1: विविध
0: है
1: रंगी है।
0: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है
1: बिल्कुल।
0: ना, कुछ नया लगता है जब। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना है
1: जी।
0: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना, इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की
1: रेजगारी।
0: रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो
1: क्या बात
0: ये
1: है।
0: सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है।

0: सफ़र। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट पिया समय है, हम सब का पसंदीदा कव्वाली हम सब की, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब ज़रूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: अभी गाना लिख दो जल्दी।
1: और हम जो हैं, मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी।
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग
0: जी,
1: बनता है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफ़ेद रंग तो अपने आप में सफ़ेद रंग है, उसको कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी यकजहती होनी चाहिए,
0: जी, जी, जी।
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए पिया समाए, जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए
0: जी जी।
1: ठीक है, सारे समुदाय जो हैं वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो हैं एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है, है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है।
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा। ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना वो
0: छुपाऊं कैसे,
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल, दो अर्थी।
1: तो हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगेंगे,
0: रंग दिखाई
1: पड़ेगा। हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिल के भई मैं उजली,
0: वाह क्या बात है,
1: सातों से मिलके
0: भाई
1: में उजली,
0: वा वा।
1: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
0: क्या बात,
1: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अब ये देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ
0: जी जी।
1: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
0: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, एक सब एकजुटता का संदेश है। और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी हैं। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा,
1: हाँ,
0: एम एम करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना। इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका, भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी। और ये गाना जो है, एम एम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोज़र हैं वो। और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना, तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको, तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे, मैंने रिकॉर्ड किया उसमें।
0: हाँ।
1: और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा, जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके, लेकिन फिर वो रवां हो गया।
0: हाँ।
1: जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर। हाँ,
0: जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना, इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत

0: जी, तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था ये, उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज़ में भी आपको मिल जाएगा वो गाना,
1: जी
0: कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं।
1: जी
0: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूज़िक कंपनी ने इसके गाने रिलीज़ किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउट स्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूज़िक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को। तो उसमें गाना था वो के ने गाया था, वो ऐ बेखबर ऐ बेखबर,
1: जी जी
0: है ना, तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा
1: जी
0: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊँ कहाँ, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ।
1: जी जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आई बेखबर
1: सुनते हैं। हाँ। ये गाना।

0: कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी,
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है ना, इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गज़लें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गज़लों को कंपोज करते थे, लेकिन वो गज़ल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गज़ल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गज़लें और पंकज उदास साहब की गज़लें, हरी हरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गज़ल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर ख़त्म हो रहा था
0: जी जी,
1: गज़ल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आज़मी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गज़लें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोज़र हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूज़िक कंपोज़र को, जो फिल्म का म्यूज़िक कंपोज़र होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूज़िक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
0: जी
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी जी,
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे, बहुत अच्छे गाने।

0: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था,
1: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
0: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी।
1: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात।
0: अच्छा,
1: तब मैं सूरत में रहता था।
0: जी जी।
1: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
0: अच्छा।
1: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार।
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
0: वहाँ तनवीर खान भी के।
1: हाँ। तो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
0: जी।
1: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नज़र उस किताब पर पड़ी
0: जी।
1: और उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
0: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
1: सर के नीचे तेरी हथेली है।
0: ओ क्या बात है।
1: ठीक है। तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊँगा, आपको भेज दूँगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
0: ओ क्या बात है।
1: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे।
0: जी जी।
1: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
0: जी।
1: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी ज़माने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
0: जी।
1: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूँ ना प्रोड्यूसर हूँ। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर। अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फ़ोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फ़ोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे

0: और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गज़ल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गज़ल से लिया गया था।
1: ओ अच्छा, क्या बात है भाई, अच्छी दिलचस्प कहानी।
0: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भले रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
1: जी,
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया, तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आज़ाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी, और समद खान कोई वहाँ के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
1: जी,
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है, और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फ़ोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी, मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया।
1: बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
0: हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
1: जी।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: बहुत
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए,
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना, मदहोशी है, मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत ज़रूरी सी बात है और आपकी करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, ख़ास बात है। अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर, आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा। मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी ज़िंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी है, उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसकी कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी ज़माने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज़्म हुई उर्मिला, जब ये नज़्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाएं। तो मेरी जो रामायण है वो

0: वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई हैं, तुलसीदास की जी हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
1: उर्मिला सखी वे मुझसे
0: हाँ
1: कहकर जाते,
0: हाँ हाँ
1: बहुत बढ़िया।
0: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है। मैंने एक नया रास्ता निकाला, पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक, जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था मैं, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया तब मुझे, मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहाँ पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब हैं, गुलजार साहब हैं, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका, उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है। और किस तरह से मतलब हिंदू मैथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है।
0: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो हाँ, बहुत शुक्रिया।
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है, और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था, जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव हैं, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, आपके ही अल्फाज हैं। आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है, और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर अंदाज में एक शायर से हम उम्मीद करते हैं, शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है, ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है।
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वो आप आगे बढ़ें। सांपों को मैं

0: ने रहने दिया उनके हाल पर।
1: क्या बात है,
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल पर।
0: मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह,
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया। मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए, ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तख्लीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह,
0: ये सीख है हम सबके लिए। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है, वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगु जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारतीय परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
0: आप भी नमस्कार। बहुत शुक्रिया ममता जी।
2: जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने

या हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर घूमने की जगहों की लिस्ट बड़ी लंबी है, जैसे दरबारगढ़, शिवराजपुर बीच, खिजादिया बर्ड सेंचुरी, नरारा मरीन नेशनल पार्क और भी बहुत कुछ। हम एक एक करके ये सब तो देखेंगे ही, लेकिन आपको पता है यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भी है। साथ ही यहाँ WHO द्वारा समर्थित ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी स्थापित है। और ज़रा अपने आसपास नज़र घुमाइए, आप पाएंगे कि यहाँ पर कपड़ों की कई दुकानें हैं। जामनगर अपनी पारंपरिक बांधनी यानी टाई एंड डाई कपड़ों और हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वैसे अब उत्पादन की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं, भारत के कुल पीतल उत्पाद का लगभग 70% हिस्सा जामनगर से आता है, इसलिए इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं आप जामनगर के बारे में? ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के अड्डे मौजूद हैं। वैसे नौसेना से याद आया, जामनगर में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है। बस इतना घूमते घूमते मैं तो बहुत थक गई, अब कुछ देर यहीं किनारे पर आराम करूंगी। आप भी मेरे साथ इस समुद्र के बीच का आनंद उठाइए और ज़रा गौर फरमाइए हमारे अगले गीत की तरफ।

में क्या क्या फेमस है। सामने स्ट्रीट पर आप जो देख पा रहे हैं उसे घुघरा कहते हैं। ये एक प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजन है जिसमें गहरे तले हुए कुरकुरे, नमकीन आटे को मसालेदार दाल की भराई से भरा जाता है, और साथ में जो आप देख रहे हैं वो है मसालेदार लहसुन और मीठी इमली की चटनी, जिसके साथ खाने से इसका मज़ा दोगुना हो जाता है। बगल में ही मटका ब्रेड भी है। ये एक अनोखी ब्रेड आधारित चाट है जिसमें ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़ों को मसालेदार और खट्टी इमली की चटनी में भिगोया जाता है और उबले हुए आलू, मूंगफली और अनारदानों के साथ मिलाया जाता है। और उसके बगल में जो दिख रहा है वो है भाजी कोन, एक खास नमकीन नाश्ता। ऐसे ही दाबेली, रस पाव, ड्राई फ्रूट कचौरी का भी अपना ही स्वाद है। भाई मैं तो सब कुछ एक एक प्लेट लगवा कर यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठा ही रही थी कि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश होने लगी। अब इतना टेस्टी नाश्ता और इतना खूबसूरत मौसम, ऐसे में एक गाना तो बनता है।

साथियों, अब इतना सारा घूमकर मुझे तो भूख लग गई। तो चलिए फिर जामनगर की गलियों में, मुझे तो खाने की खुशबू यहाँ तक आ रही है। आइए चलकर देखते हैं जामनगर में खाने

साथियों, मैं तो अपनी इमेजिनेशन में सारा जामनगर घूमाई। उम्मीद है आपको भी मेरे साथ घूमकर बड़ा मजा आया होगा। आपको जामनगर और हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, हमें पत्रों और ईमेल्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर, अब घड़ी के कांटे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर इशारा कर रहे हैं, तो आपको बता देते हैं प्रारंभ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है केरल। दूसरा प्रश्न था, स्काईहॉप एविएशन द्वारा भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन कहाँ शुरू की जाएगी? जिसका उत्तर है लक्षद्वीप। साथियों, इसी के साथ आपकी रेडियो दोस्त पलक को दे इजाजत कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार।

श्रोताओ, आपने सुना युववाणी कार्यक्रम FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच ओवल लंदन में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल।

6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिए संगीत सरिता, और शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा जय माला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 बजे हवा महल में आज सुनिए नाटिका उनके महबूब, लेखिका है विमला रैना, निर्देशन किया है लोचन बख्शी ने। रात 9 बजे कार्यक्रम होगा आपके लिए, और 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है संगीतकार कल्याण जी पर। रात 10 बजे छाया गीत में आज सुनिए ममता सिंह को। कल सुबह 6:05 पर वंदनवार और चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरित मानस

गान का भाग सुनिए 236। संगीत सरिता इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनिए। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, श्रृंखला का पहला भाग। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार, संपादन सहायक झरना सोलंकी, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम शाम 6:45 पर दोबारा सुना जा सकता है। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7:00 और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार की। तिरवणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं दोपहर 2:00। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 और रात 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। कल सुबह 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार सी अर्जुन पर। आलेख और स्वर है अशोक सोनावने का। प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात 9:30 पर। कल दिन में 10:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए सेलोलाइट के सितारे में गीतकार, शायर और लेखक शकील आजमी से की गई ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहायक काजल भदरंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 11:00 मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सुनिए रंग तरंग और 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की तरह कल भी 1:00 हमारे साथ तय कीजिए संगीत का सफर। कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे। 3:00 सखियों का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के विषय हैं पारिवारिक चिकित्सक, साड़ियों का संसार, शब्द हमारे विचार आपके और व्यंजन। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 4:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए आज के मेहमान में वरिष्ठ साहित्यकार हरिशंकर राठी से की गई मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 5:00 छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा और 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल 7:00 कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे राग अनुराग। कल रात्रि 8:00 हवा महल में सुनिए झलकी दिव्य स्वप्न। लेखक हैं मनसुख देसाई, निर्देशक हैं सत्येंद्र शरत। रात 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। रात 10:00 छाया गीत में सुनिए मंदाकिनी जोशी को, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11:00 कार्यक्रम होगा रंग तरंग। देश विदेश की ताजा तरीन खबरें जानने के लिए सुबह वो शाम 6:00, मध्यान्ह 12:00, सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 2:15 पर दोपहर समाचार और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या सुनिए। कल सुबह और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम संध्या रंजन में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों में गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन का लिखा गीत। फिल्म का नाम है गीत गाता चल।

मुकेश और साथियों की आवाज़ों में अगला गीत है, रचना है भरत व्यास की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है संत ज्ञानेश्वर।

0: संगीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम आपके लिए चुनकर ला रहे हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, क्योंकि वो दुर्लभ हैं और अमूल्य हैं। आइए आज सुनते हैं किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हंगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत।
2: डॉक्टर गंगूबाई हंगल जी नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: सुना है कि आपकी माता जी कर्नाटक संगीत पद्धति की विदुषी थी, फिर भी आपको हिंदुस्तानी संगीत के प्रति कैसी प्रेरणा मिली?
3: उस वक्त ऐसे है, ज्यादा हिंदुस्तानी सुनने को मिलता था। मेरी माई कर्नाटक गाती थी, हम किसी को नहीं सुना उस वक्त।
2: अच्छा।
3: इसलिए जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड आते जाते चाय के दुकान में हो या किसी के घर में हो, हम सुनते थे, वो हम सुन के थोड़ा थोड़ा गाने

0: हिंदुस्तानी संगीत,
1: हिंदुस्तानी संगीत।
0: अच्छा,
1: उस झोरा भाई, जानकी भाई, उस पैरा साहेब, ऐसे लोगों के हमने, मुझे याद है वो नाम इतने, वो हमने गाने लगे थोड़े बहुत सुन सुन के घर में। मुझे, मेरे माँ को ऐसे लगा इसको हिंदुस्तानी संगीत पसंद है, इसको सिखाएंगे, इसलिए
0: हिंदुस्तानी संगीत
1: संगीत सिखाएंगे। बाद में वो थोड़ा इधर से धारवाड़ में हमारा जन्म है, बाद में मुझे उस हुबली ले गई, वहाँ उलगुर कृष्णाचार्य करके
0: संगीत विद्वान
1: हुए, अब्दुल करीम खान के शागिर्द थे। अच्छा। उसके पास एक साल तक हमने
0: शिक्षा
1: की। वो एक साल में मुझे ऐसा लगता है 50 धृत लय की वो चीजें बंदिश हमको बताए।
0: अच्छा।
1: मेरे आवाज पतला बहुत था।
0: अच्छा।
1: वो तो 3-3 मिनट में एक एक बंदिश में दो दो ताने ऐसे कुछ वो बताए थे।
0: अच्छा।
1: हम ऐसे छोटा मोटा, कहीं हमारे माँ का प्रोग्राम हम बीच में हुए, मैं भी गाती थी,
0: स्वर लगाती थी।
1: अच्छा। नहीं अलग से, क्योंकि मेरे माँ ने थोड़े बहुत शुरू में जो मुझे सिखाए स्वर के ज्ञान उनसे हो गया मेरे माँ से।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो सुबह सुबह, उस वक्त मुझे बहुत छोटी थी उम्र में, 9-10 साल की, 5 बजे मुझे उठाती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, कर्नाटक स्वर तो कर्नाटक हिंदुस्तानी तो अलग नहीं है,
0: बिल्कुल सही बात।
1: इसलिए स्वर का साधना मेरे माँ से मिल गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो उनकी पद्धति से मुझे रोज वो 1-1.5 घंटा सूर्यास करवाती थी। बाद में बीच में थोड़ा कुछ वजह से बंद हुआ, बाद में सवाई गंधर्व के पास थोड़े से बड़ी हुई थी, उस वक्त से हमने
0: उच्च शिक्षा
1: प्राप्त हो पाई।
0: डॉक्टर गंगूबाई जी, आप तो किराने घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं, क्या आप किराना घराने के विशेषता के बारे में कुछ बताएंगे?
1: किराने घराने ऐसे हैं, स्वर अच्छी तरह से लगाना, बाकी का बेसुर गाते ऐसे नहीं,
0: बिल्कुल
1: ये स्वर में ज्यादा ध्यान रखे हैं, इसलिए वो तो ऐसे बोलते हैं तंत्रवाद्यकार थे इनके पूर्वज, ऐसे कैसे भी वो ज्यादा स्वर का ध्यान रखते हैं, स्वर के ज्यादा महत्व दे के, स्वर एकदम आ करके नहीं लगाएंगे, उसको गोल ऐसे आ ऐसे करके लगा के एकदम स्वर में गाड़ना बोलते हैं, क्या बोलते मुझे याद नहीं,
0: मग्न हो जाना।
1: ऐसे गाने का हमारे किराने घराने की पद्धति है।
0: क्या आप गुरुकुल पद्धति में विश्वास रखती हैं?
1: हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं सभी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में संगीत है, फिर वो अच्छे हैं, क्योंकि प्रचार के लिए गायक बनना हो तो गुरुकुल पद्धति चाहिए, नहीं तो उनके लिए क्या होता है, किस घराने से जाना, किसके पास सीखना, ये कुछ मालूम हो जाता है उनको।
0: अच्छा।
1: हाँ, गायक बनने के लिए गुरु पद्धति, मैंने तो शिक्षा पाई है, मुझे उस विश्वास इसी में है।
0: अच्छा, आप नए छात्रों के लिए क्या देने के, कैसे रियाज करना चाहिए और रागों की बढ़त कैसी करनी चाहिए?
1: वो तो किसी का आवाज पतला रहते हैं, किसी का बुद्धि अच्छा रहता है, आवाज नहीं रहते, वो गुरु ने बताना चाहिए किस पद्धति से वो
0: रियाज
1: करना। हमको तो हमारे गुरु जी ने एक एक स्वर का सुबह बैठने से तोड़ी शाम में मुल्तानी ऐसे हमको रियाज करने के लिए मुझे बताए थे। ऐसे एक एक स्वर षड्ज नीचे जितने जाता है खर्च पे उतने एक एक स्वर, सांस जब तक है उस तक एक एक स्वर
0: कहना चाहिए।
1: और बाद में उसका ताने के तरह एक एक श्वास में कितनी दफे
0: ताने
1: आते हैं, सा नी रा बा पा दा नी सा, ये जो है श्वास बढ़ाते ऐसी इतनी 6-7 कितने आते हैं इतने, ऐसे हमको बताए थे। और विस्तार करने में 3 स्वर सारेगा गारेगा, इतनी उनके अलग अलग
0: ढंग
1: होता है। बाद में गांधार के बाद मध्यम के बाद ऐसे जितने हमारे बुद्धि काम करेगा करना गाना, ये हमको सिखाए उस वक्त। रास्ता ठीक बताना ये गुरु का काम है।
0: तो आप कहते हैं कि संस्थाओं में जैसे कि यूनिवर्सिटी हो या संगीत के महाविद्यालय हो, वहाँ संगीत की शिक्षा, यानी कि वहाँ से कोई संगीतकार नहीं
1: बन पाता? कम, हमने तो देखे ही नहीं ऐसे, क्योंकि क्या होता है स्कूल से वो थोड़ा बहुत संगीत हो तो हो जाता है,

0: और एकदम कॉलेज में आना, कॉलेज में जब आते हैं 16 वर्ष तो हो जाते हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं संगीत शुरुआत होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है स्कूल से, आजकल हम देखते हैं स्कूल में प्रार्थना का अगर दूसरे को उनको पता नहीं, साल में एक गायक उसमें से निकलते, बहुत कुछ होगा।
1: हाँ, तो आजकल आपको किस तरह के श्रोता मिलते हैं, यानी कि शास्त्रीय संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले या
0: वो? हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता, हम जो गाते वही सुनने वाले ही हमको मिलते हैं।
1: अच्छा,
0: आजकल उनको पता है गंगू भाई दूसरे कोई कुछ नहीं गाएगी, वो जो सुनने वाले वही आते हैं, मुझे कोई फरमाशी नहीं करते।
1: अच्छा,
0: शुरू बचपन में सब कुछ गाती थी हम, मराठी गजल ठुमरी हमने, मुझे बाद में ऐसे लगा इसमें करने का मुझे फुर्सत नहीं मिलते।
1: अच्छा,
0: ये मुझे मेरा ये है वो।
1: अच्छा,
0: इसलिए यही गाते चले आए हमने।
1: छात्रों के लिए आपका क्या आदेश है?
0: श्रद्धा भक्ति से जो गुरु बताते हैं एक करना, फिर विश्वास से।
1: अच्छा, आप इतने राग गाती हैं, उनमें से आपको अत्यंत प्रिय कौन सा राग है?
0: कभी कभी एक एक राग जम जाता है, ज्यादा से ज्यादा से करुणा रस सुबह का राग मुझे ज्यादा, मुझे गाने के अच्छा लगता है। वो प्रोग्राम में तो सभी राग एक एक दफे हमको ऐसा लगता है ये राग मुझे इतनी नहीं, फिर वो ही जम जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज्यादा से कोमल स्वर का मुझे मुझे पसंद है।
1: क्या आप एक उनकी झलक दिखाएंगे किसी एक राग में?
0: अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं कोमल रेखा वासावली।
1: हाँ,
0: ता

0: धन्यवाद डॉक्टर गंगूबाई जी।
1: आज आपने सुनी बातचीत किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत। आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र पर रिकॉर्ड की गई ये बातचीत वर्ष 1990 में विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसारित हुई। इसकी प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। वर्ष 1913 में जन्मी गंगूबाई हनगल जीवन भर संगीत की साधना करती रहीं। वैसी कठोर साधना, अथक परिश्रम और कड़े रियाज ने उन्हें गिने चुने शीर्षस्थ कलाकारों की पंक्ति में स्थान दिलाया। उनके अद्भुत कंठ से निकलकर सरों का जो आविष्कार होता था उसका कोई सानी नहीं। आज वो हमारे बीच नहीं है। वर्ष 2009 में वे असीम में विलीन हो गईं, परंतु उनकी आवाज हम सुन सकते हैं, जैसे उनसे की गई ये बातचीत अभी हमने सुनी। इसी तरह आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ राग चंद्रकौंस। 3 ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं, कब घर आओ पिया।

आप सुन रहे थे विविध भारती के खजाने से। आज की कलाकार थीं विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला आप
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। यह पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का एक हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि

0: मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। यहां टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू भाता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी खंडवा।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: हम बने हैं साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा की। ट्यून कीजिए FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ या डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: मीठी मीठी निमाड़ की सुरीली धड़कन,
4: जहाँ होती है मीठी मीठी बातें और सुनाए जाते हैं प्यारे प्यारे गाने।
5: इश्क़ दी चाशनी, ओ मीठी मीठी चाशनी।
3: तो आप भी इसकी मिठास में खो जाएं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
5: ओ मीठी मीठी चाशनी।
6: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन,
0: आकाशवाणी खंडवा।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एहसास की जो जुबान बन गए,
2: ध्वनि तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
2: सुनते रहे निवाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा
3: FM 101.2 MHz पर। श्रोताओ, हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं। आपको सुनवाते हैं भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राजगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 352 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 63 विद्यार्थियों को मिले पदक। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर सिधो, कान्हू, चंद भैरव और फुलोझानो सहित सभी वीर आदिवासी योद्वाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हूल दिवस आदिवासी समुदायों के असाधारण साहस और बलिदान का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष देशवासियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 जुलाई को भारत आ रही है। ताकाइची 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को समावेशी समाज निर्माण का साधन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि शिक्षित युवाओं को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देना चाहिए और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण पर भी बल दिया।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने भैंसवा माता मंदिर परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित किया। डॉ. यादव ने कहा कि 19 मार्च से 30 जून तक चले इस अभियान में प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनरुद्धार किया गया है।
2: जलगंगा अभियान 10 संभाग में 55 जिलों में सभी विधानसभा, सभी तहसील, सभी पंचायत में एक साथ हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग इस प्रकार की योजनाओं से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से ये हमारा पूरा कार्यक्रम आज समापन पे या इस अभियान का एक चरण हो रहा है, अगला चरण भी हम चालू करेंगे।
0: इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं।
2: सिंहस्थ में जब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और 40 करोड़ लोगों के लिए हम अगर प्रबंधन कर रहे हैं और वो प्रबंधन भी मास्टर प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, मास्टर प्लान भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय जो बनाया गया है उनका प्रबंधन भी वैसे करने वाले हैं। विश्व के लिए सबसे बड़ा मेला अगर कोई है, ये देश का और देश से बढ़कर विदेश से लेकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है।
0: जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय थल सेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल पूरा होने पर एक आधिकारिक समारोह में उन्होंने सेना की कमान जनरल सेठ को सौंपी। जनरल सेठ इससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और 28 साल बाद आर्म्ड कोर से सेना प्रमुख बने हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत्व भवन में लोकमाता अहिल्याबाई राष्ट्र पुनरुत्थान की संकल्पना पुस्तक का विमोचन किया। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित इस शोध संकलन में अहिल्याबाई होलकर के जीवन, प्रशासनिक दक्षता और समाजोत्थान से जुड़े 19 अध्याय शामिल हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डीलित उपाधि से सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बावड़िया कला से आशिमा मॉल तक प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी माह निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। मंत्री ने पिपलानी खजूरी रोड में देरी पर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को नोटिस देने के निर्देश दिए। प्रदेश ने एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों के लिए GI टैग हासिल किया है। देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में GI टैग मिले हैं, जिसमें गुना का धनिया

बैतूल का गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च, जबलपुर का मटर और सिंघाड़ा, बुरहानपुर का केला और छतरपुर का पान शामिल है। इसके अलावा 7 और फसलों के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव भेजा गया है। भोपाल में नमामि गंगे मिशन के तहत बेतवा नदी के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी 2 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यशाला में डीपीआर तैयार करते समय प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इनके बैंक खातों में करीब 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जमा कराई गई है। श्री तोमर ने बताया कि 1 किलोवाट संयंत्र पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या अधिक पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी सास गिरबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने अदालत से जब्त लैपटॉप का पासवर्ड दिलाने और दोनों आरोपितों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी है, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं गिरबाला सिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशा विरोधी अभियान के तहत गोविंदपुरा क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। यास्तिका भाटिया की जगह जी कमलनी को टीम में शामिल किया गया है, जबकि प्रेमा राउत को बाहर रखा गया है। आपको समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर के मूसाखेड़े स्थित कबीर मंदिर में श्री सतगुरु कबीर साहब का 629वां प्रकट उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में चौका आरती और भजन संध्या हुई, जिसमें विधायक महेंद्र हड्डिया सहित बड़ी संख्या में कोलीकोरी समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन लालचंद सोमेश ने किया। खंडवा में जलगंगा संवर्धन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह आज किशोर कुमार सभागार में आयोजित किया गया। वहीं शिवपुर कलेक्टर के मार्गदर्शन में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज ग्राम पंचायत मठेपुरा स्थित बावड़ी पर आयोजित हुआ। झाबुआ में ग्राम पंचायत जुलवानिया बड़ा जनपद थांदला में 14वें वित्त आयोग के 2 निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कार्रवाई की गई है। देवास में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला स्तरीय मास्टर वॉलेंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदसौर में जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर ने 83 आवेदकों की समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए। वहीं नीमच कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने जिले भर से आए नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में बीते 4 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 7:20 और 39 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है किसान वाणी कार्यक्रम।

0: आज का किसान वाणी कार्यक्रम का साथ छे आपको अपनो भाई जगदीप सिंह परे। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सब किसान भाई बहनों का मारी राम राम। किसान बंधुओं, बारिश को मौसम शुरू हो चुके हो, जिना आप सब किसान भाई बहन खरीफ फसल की बोनी का बारा में सोच रहा होगा। न कुछ किसान भाई बहन जिनका पास पानी को पर्याप्त साधन छे, उनकी मई माह में लगाए कपास की फसल में तो कोल पनी न निंदाई गुड़ाई को काम चली रहा होगा। न जी किसान भाई बहन खरीफ की फसल का लेना बारिश पर निर्भर छे, वो या तो अच्छी बारिश होना को इंतजार करी रहा होगा या उन भी बोनी शुरू करी दी होगा। पर भाई बहन होना इना साल खंडीय बारिश हुई रहेज, मतलब कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बारिश हुई रहेज। तो एको मतलब ये नहीं कि अगर हमारा यहाँ कम बारिश तो हम बोनी करी देवा। तो किसान भाई बहनों ने कृषि विशेषज्ञों को भी योज मानना छे कि कम से कम 3 से 4 इंच यानी 75 से 100 मिलीमीटर बारिश होने का बाद बोनी करनी चाहिए। अगर पहली हल्की बारिश आधा या 1 इंच होने पर ज बोनी करी दी न, फिर 4-5 दिन तेज धूप निकल जाए तो फिर बीज अंकुरित हुई न सूखी जाए न नष्ट हो जाए। न 3 से 4 इंच बारिश होने पर मिट्टी में नमी 6 से 9 इंच तक पर्याप्त गहरी चली जाए, जी कि यो नमी शुरुआती सूखो पड़ने पर फसल का बचाव ना करें बहुत जरूरी रह। न किसान भाई बहनों यहाँ एक बात अरु यो जानना भी जरूरी हो जाए कि बीज न का फफूंद नासी कीटनाशी न जैविक कल्चर नासी उपचारित करने का बाद आज बोनी करनी चाहिए, क्योंकि यो प्रक्रिया बीज न का मिट्टी जनित रोग न शुरुआती लगने वाला कीट नासी बचावज। तो किसान भाई बहनों यो तिथि अपनी थोड़ी सी बातचीत बोनी का पहला सावधानी न पर। न किसान बहनों अभी अपना जिला में भी 28 जून से 30 जून तक यानी कि आज तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। किसान बहनों ऐसी कई बीमारी ने छे जी की लाइलाज छे न ऐसी बीमारी न का लक्षण दिखता बहुत समय गुजरी जाए न जिनका लक्षण अगर हमका दिखज भी तो हम उनका नज़रअंदाज कर देवाज न सोच लेवाज कि यो सब हरारत थकावट से हो तो होएगा। पर ऐसी लापरवाही करता करता वो बीमारी हमारा शरीर में इतनी फैली जाए कि फिर वो नियंत्रित नहीं हो पाती है न जान पर बनी आवाज। एक कारण इना प्रकार न कि बीमारी न का टीका लगाया जाए ताकि वो हमारा शरीर में घर नहीं बने पाओ। आपको मालूम होगा कि हमारा जानवर या पशु न कभी बारिश ठंड या गर्मियों में होने वाली बीमारी न का हम टीका इनका पहले लगाड़ी लेवाज ताकि वो बीमारी हमारा पशु न का नहीं पावा। तो किसान बहनों एका लेना 5 साल तक का बच्चा न का पोलियो जैसा घातक रोग से बचना का लेना पोलियो की दवाई बच्चा न का पी ले जाए ताकि बाद में यो रोग से बच्चा बची सका। पल्स पोलियो यो एक आंसू टीकाकरण अभियान छे जेमा बहुत कम समय में या एकज दिन में देश का सभी बच्चा न का एक साथ पोलियो की खुराक पिलाई जाए न एक बाद भी अगर जी बच्चा छुटी जाए तो अगला 2 दिन तक स्वास्थ्य कर्मी उनका घर घर जाई न यो पोलियो की खुराक पिलावज। पल्स पोलियो पल्स को मतलब चिकित्सा की भाषा में थोड़ा समय का लेना करी जाँच वाली गतिविधि से एक अंतर्गत सभी बच्चा नख एकज निर्धारित दिन पर दवा पिलाई जाए न पोलियो मतलब यो एक संक्रामक बीमारी को नाम छे जी की वायरस का कारण हो न एकासी बच्चा नख लकवो या पक्षाघात हुई सकज। किसान बहनों यो भारत शासन द्वारा एक करे गयो एक विशिष्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन समर्थित राष्ट्रीय अभियान छे। एक तहत 0 से 5 साल तक का सभी बच्चा नख अनिवार्य रूप से पोलियो की 2 बूंद दवाई पिलाऊनो जरूरी है ताकि इन बीमारी का हम पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकें। तो किसान बहनों आपका बच्चा भी अगर 5 साल से कम उम्र का छे तो इना संक्रामक रोग से अपना बच्चा न की सुरक्षा का लेना 2 बूंद पोलियो की जरूर पिलाओ जो। तो किसान बहनों यो थी अपनी थोड़ी सी बातचीत पल्स पोलियो अभियान न बोनी का पूर्व आवश्यक सावधानी न पर। न भाई बहनों बातचीत तो हम आगे भी करेंगे, बस पहला आवाज सुन लेवा यो बारिश को गीत निमाड़ी में तुलाराम गिन्नारे न साथी न गायो छे।
1: कि आयो बारिश को मौसम भैया अरे हरियाली संग आई गई।

वरुण, अभी हम तुराराम गिन्नारे ने साथी न सी यो निमाड़ी लोग सुने रहता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
7: जी,
6: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
7: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
6: पर ये होगा कैसे?
7: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
6: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
7: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
6: बस
7: बस
6: समझ गया।
7: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

किसान भाई मित्रों, जैसो कि हम अपना कार्यक्रम की शुरुआत में खेती किसानी से जुड़ियो सामान्य ज्ञात पर आधारित एक प्रश्न आपसे करांज, तो आओ अब जानी लेवांज कि अपना आज को प्रश्न काई छे। हमारा आज को प्रश्न छे, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती करना पर केंद्र शासन द्वारा किसान का हर साल प्रोत्साहन राशि का रूप में कितनी राशि दी जाए। प्रश्न एक बार फिर सुनो, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का अंतर्गत प्राकृतिक खेती करना पर केंद्र शासन द्वारा किसान न का हर साल प्रोत्साहन राशि का रूप में कितनी राशि दी जाए। तो भाई बहनों, यो है हमारा आज को प्रश्न। आप सब किसान भाई बहनों से नहीं ना प्रश्न को उत्तर सुन जो हमारा सी कार्यक्रम का आखिरी में, तब तक इना प्रश्न को उत्तर सोचो न अपना कार्यक्रम को आनंद लो। न किसान भाई बहनों, आओ अब हम बात करें हमारी आज की मुख्य चर्चा के बारे में। तो किसान भाई बहनों, हमारी राज्य शासन का साथ है, हमारी केंद्र शासन भी हमारा छोटा न सीमांत किसान भाई बहन की स्थिति ख आरू भी अच्छी न बेहतर करना का लेना कई योजना न पूरा देश में चले रही, ताकि वो इन्हीं योजना न को लाभ लेना अपनी आर्थिक स्थिति ख आरू भी मजबूत करी ले, ताकि उनका विकास का साथ साथ हमारो देश भी विकसित हो जाए। तो किसान भाई बहनों, हम बात करी रहे आज एक ऐसी योजना की जी राष्ट्रीय स्तर पर चली रही न हमारा देश का किसान भाई बहन नख धन धन्य सी परिपूर्ण भी करी रही। तो किसान भाई बहनों, उन योजनाओं को नाम भी कुछ आसुच छे। तो उन योजना को नाम छे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। भाई बहनों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना काई छे आओ एक बारे में जाना। इन योजना के अंतर्गत खेती ख आरू भी आसान आधुनिक न ज्यादा लाभदायक बनावना का लेना केंद्रीय बजट 2025 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा करी गई। न एक नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम न का अनुरूप बनी गई, पर यो विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्र न पर केंद्रित छे। किसान भाई बहनों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का लेना कोई अलग बजटीय आवंटन नहीं है, बल्कि यो 11 विभाग न की 36 मौजूदा योजना न का बजट का एकीकृत या शामिल करज, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नगद हस्तांतरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मतलब फसल बीमा, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मतलब सिंचाई, यो शामिल छे। न इनको वार्षिक परिव्यय 2025-26 से लेकर 2030-31 तक 24,000 करोड़ रुपया छे, जी की कुल मिले न 1.44 लाख करोड़ रुपया छे। न इनमें लगभग 40% सब्सिडी का लेना, 30% बुनियादी ढांचा का लेना, 20% ऋण का लेना, न और 10% प्रशिक्षण और बाजार समर्थन का लेना निर्धारित करेल छे। न भरनोण, अब योजना न का मुख्य उद्देश्य की बात करा तो इन योजना का मुख्य उद्देश्य छे कृषि उत्पादकता और किसान न की आय में वृद्धि, फसल विविधीकरण न और संधारणीय कृषि पद्धति नख बढ़ावा देणु, कटाई के बाद भंडारण और मूल्य संवर्धन को विस्तार करनु, आय का स्रोत नम विविधता लावना का लेना, महिला युवा और संबद्ध क्षेत्र जैसा कि डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि नख समर्थन देणु, आयात पर भारत की निर्भरता कम करना का लेना, खाद्यान्न दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनु, न और सिंचाई का बुनियादी ढांचा ख मजबूत करनु, साथज दीर्घकालिक न अल्पकालिक दुई कृषि ऋण न तक पहुँच में सुधार करनु, ये सारा का सारा उद्देश्य प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का छे। न किसान भाई बहनों, हम भी सौभाग्यशाली छे कि इन्हीं योजना के अंतर्गत जो 100 आकांक्षी जिला नख चुनिया गया जो शासन के मापदंड के अनुसार मतलब जो पिछड़ेल छे, तो वो जिला नाम हमारो जिलों भी शामिल छे, न इन योजना को लाभ हमको भी मिली सकज। तो भाई बहनों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से पूरा भारत में लगभग 1.7 करोड़ किसान नख प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना छे। साथ ही यो पशुपालन, मछली पालन न दुग्ध पालन जैसा संबद्ध क्षेत्र नख भी शामिल करेगा। तो किसान भाई बहनों, यो थी अपनी आज की बात प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर। न अब आओ चलांज जानकारी की तरफ, न सुनांज एक महत्वपूर्ण न समसामयिक स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित भेंटवार्ता, जे को विषय छे तिलहनी फसल नम तिल्ली की खेती आज की आवश्यकता। इन अवसर पर जानकारी दे रहे आज ग्राम जसवाड़ी का युवा प्रगतिशील कृषक भाई पुष्पेंद्र सिंह मौर्य, न आपसी बातचीत करीज जगदीप सिंह फरेद। तो आओ सुना यो भेंटवार्ता। सब किसान भाई बहन राम राम। किसान भाई बहन होन, कुछ साल न से देखना में आई रहे कि हमारा किसान भाई बहन न तिलहनी फसल न को रकबो

0: निकलता रहे
1: हाँ।
0: तो ओकरा साथ ओकर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहे तो एक वहां भी बहुत ज्यादा दिक्कत आवे जे कि अंकुरण में
1: हाँ।
0: ना दूसरो एक साथ में समस्या ये आवे कि अगर कभी तेज धूप मिली
1: हाँ।
0: तो पत्तो बहुत जल्दी चली जाए कुरुम
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ना अगर कभी तेज पानी आएगो तो बहुत जल्दी मट्टी में ढकी भी जाए
1: अच्छा।
0: तो डबल सी उगी नहीं पाती है हल्की 50% नमी तक भी अगर जमीन में अगर होगा तो भी एक अंदर अच्छो सर्वाइव करी जाएगा।
1: एक बात और यहाँ याद आई कि कितनी गहरे पटक नीचे भोतरो बारीक रह
0: ज्यादा गहरे पत्ते ली नहीं सकते एक हाँ। तो हम अपने जैसे कहो नहीं कि हाँ। की बोनी में आजकल एक रकबो क्यों कम हुई क्योंकि लोग कई कर रहे कि बोने के लिए तो आजकल सीड ड्रिल वापर सीड ड्रिल से अगर करांगा तो हाँ। गहराई बहुत ज्यादा
1: हो जाएगा
0: तो एक हमेशा ये मानी चले कि एक 2 इंच की 2 इंच की गहराई तक हो जाए तो बहुत चाहिए मट्टी हल्की से ढकी जाए
1: बिल्कुल
0: जब बीज अंकुरण हुई ना बाहर आई सका ना 2 किलो प्रति एकड़ का लगभग बारिश का समय में बीज लेना
1: चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई अपना पूछन भाई। अच्छा तिल्ली का बोनो को उचित समय काई छे ना एक बोते समय काई काई सावधानी रखनी चाहिए ताकि एक पौधा 100% अंकुरित हो और साथ में स्वस्थ निरोगी रहे।
0: तिल्ली जो फसल छे एक अंदर एक थोड़ो एक हमें रोग कीट को प्रकोप कम रहे लेकिन रोग को प्रकोप ज्यादा रहे।
1: अच्छा
0: तो एक सबसे बड़ी चीज है कि एक जब भी वाओ तो एक बिना ट्रीटमेंट का नहीं वाओनु चाहिए
1: हाँ।
0: सीट ट्रीटमेंट में आप ले तो कार्बनडाइजेम इनको जब सबसे बढ़िया छे और अगर एक बाद भी अपने का लगा कि हाँ अपन अगर 1-2 साल से वही रहना अगर लगता उगाता साथ में अगर तिल्ली आपकी पत्तो पीलो पड़ी ना मुरझे जाए तो ओखंदे ये बैक्टीरियल डिसीज हुई रही
1: अच्छा।
0: तो एक आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन करी ना भी एक आवत दवाई ओका साथ में भी मिक्स करी ना ट्रीटमेंट करी ना ओका साथ ओका वाउनु
1: मतलब बगैर उपचारित करे तो वाउनु नहीं चाहिए
0: हाँ। ना ओका उपचारित के साथ भी वो भी करो ना ओका साथ में एक नहीं हल्को मतलब ये कि एको कंपटीशन खरपतवार से ज्यादा रहे तो एक बिल्कुल हल्की सी ऊपर की स्थिति में रखो तो बहुत बढ़िया रहेगा।
1: अच्छा अच्छा अभी हमने बात करी थी बोने का तरीका की तो एक उचित तरीको और उकाई होनी चाहिए ताकि वो डांट नहीं होए ना वो भार हमका अच्छा मिले।
0: एको डाट तो आपका हल्को सो मतलब ये मानी चलो कि ये उत्पादन अगर अच्छो लेनु छे तो एक आपको थोड़ा थोड़ा डाट बावनु हो पड़ेगा
1: अच्छा।
0: अपन हर फसल में कह सकें नोखा उगना का बाद में एक बार की निंदाई क्योंकि एक अंदर किसी प्रकार को खरपतवार नाशक नहीं डालते हैं
1: बिल्कुल
0: तो एक मजदूर से ही निंदाणु पड़ेगा आपको तो जब निंदाई होगा तो अंदर मजदूर होगा आराम से इल्लो कर देगा अगर वो पहले से अगर इल्लो उंगेगी तो आप डबल से फिर रिसोइंग करने की रिस्क नहीं ले सकते
1: तो फिर भी पौधा की दूरी कितनी होनी चाहिए पौधा
0: हाँ मतलब अपन ये कर सकते हैं कि जैसे डाट वाई दी बाद में उंगी आई हाँ। बाद में फिर अपन जब निंदाई कराड़ी रहा
1: हाँ।
0: कोई लाड़ी रहा
1: हाँ।
0: तो आप ये मानी सको 15-30 सेंटीमीटर वाले जो चलन
1: हाँ।
0: फार्मूला सबसे बढ़िया चाहिए 15-30 या 25 के बीच में आप ले सको
1: और 4 से 5 की दूरी
0: वो हमारे सबसे आपको 1.5 फीट यानी कि आप मानी चलो 1.5 फीट की दूरी पे ले तो बहुत बढ़िया।
1: अच्छा अच्छा भाई तिल्ली ओकी बोनी का कितना दिन बाद कृषि कार्य करनी चाहिए या निंदाई गोड़े कुलपनी हम करनी चाहिए हमको
0: तिल्ली की बोनी अगर अक्सर देखें हाँ सबसे पहले जो दूसरी फसल है जो 6 मेन क्रॉप
1: हाँ।
0: वो बोने के बाद में ही एक ही आखिरी में बोवनी कराएं
1: अच्छा, हाँ।
0: क्योंकि ये बीच में खरपतवार निकले आवाज तो पहले खेत का जैसे बोवनी करने के लिए नोखा सबसे आखिरी में बोवन की जब तक 8 दिन को और गैप हुई जाए तो ये मानी चलो कि आप जुलाई का पहला सप्ताह में अगर वाओगा तो हमारे हिसाब से ठीक रहेगा क्योंकि अपने इधर जो मैदानी इलाका में अपन जो बोनी कराएं वो 80 से 90 दिन का लगभग में तिल्ली बारिश की आई जाए तो उधर फिर अपने आखिरी में बारिश को समय नहीं मिल दिक्कत नहीं आना की आखिरी में जो पानी पड़ेगा उस समय में अपने को दिक्कत नहीं आवा तो एक आप ही नहीं 15 जुलाई का पहला सप्ताह से लेने दूसरा सप्ताह के बीच में की बोनी कराएं जब तक एक मां वो आ जाएगा आपका खरपतवार निकले हुआ तो एक बार वक्कर मारी ना फिर आप एक वाई देवांगा तो कोई समस्या नहीं आने।
1: अच्छा यहाँ एक प्रश्न और छुट्टी रहते सुन भाई ये तिल्ली का साथ या अन्य फसल का साथ तिल्ली की फसल बोई जा सकज
0: हाँ बिल्कुल पहले बोता था
1: हाँ हाँ।
0: आजकल चलो कि तुअर को जो एक चलो बहुत ज्यादा तुअर को रकबो बढ़ी रहे क्योंकि सबसे ज्यादा किसान को प्रकाश का ही क्योंकि जी फसल का अगर अच्छा दाम मिल लगा तो ओखो किसान ओखो तरफ ओखो रुझान बढ़ी जाए
1: अच्छा।
0: तो अभी तुअर को भाव अच्छो मिली रोज तुअर को उत्पादन अच्छो हुई रोज तो लगभग लगभग हर किसान तुअर लवाई रहे तो तुअर का साथ में कहीं लोग बीच में मूंगफली वाई रहे कुछ लोग तुअर के बीच में 6 फीट या 7 फीट या 8 फीट तक की दूरी पर तुअर वाई दे बीच के अंदर मक्का ली ले क्योंकि तुअर की हाइट जब तक आवे जब तक मक्का कटी ना बाहर हो जाए उसी उन्हीं अवस्था में आप मूंगफली बोई रहा तो बीच में तिल्ली नाखी दे की तिल्ली को मूंगफली को गोड़ नीचे रह जाए तिल्ली ऊपर के ऊपर कटी जाए
1: बिल्कुल तो दो ही फसल ना को अच्छा उत्पादन मिल
0: हाँ, तो तिल्ली तुअर के बीच में तिल्ली का साथ में मूंगफली के साथ में एक आराम से ले सका।
1: अच्छा अभी हमने इनका दूर दूर लाने की बात करी थी तो पौधा कितना कितना बड़ा हो जाए तब हम उनका ले दे
0: हम ये तो ये डिपेंड करेगा ओखा पर कि वो अपने को 20 सेंटीमीटर अपन बोला
1: अच्छा।
0: यानी कि अपन सीधी सी बात बोला अपने अपनी आड़ी भाषा में कि एक गिलास को गोड़ हो जाए तो बात में अपन करा तो ठीक रहेगा क्योंकि ओखा से

0: पहले इनलैंड में भी रिस्क ही छे, नोखा बाद में अगर आप करोगे तो दूसरा पौधों की जड़ दूसरा पौधा की जड़ डिस्टर्ब कर देगा तो रिस्क हो जाएगा, तो 20-25 दिन का हेर फेर में कर सकते।
1: अच्छा, अभी आपने बीच में बताया था कि ये फसल पर खरपतवार नाशक छिड़काव नहीं होता, तो कब करना चाहिए?
0: चर्चा में अपन बार बार हम वो कह रहे अपने का सबसे पहले का आखिरी में बुआई करें, खरपतवार जमीन हल्की जमीन में अक्सर अपन इधर अपने निर्माण क्षेत्र में लोग अक्सर हल्की जमीन में आवे तो ओखा अंदर खरपतवार बहुत ज्यादा हो, तो ओखर कंट्रोल करने के लिए ये की फायदो भी अच्छे की 15 जुलाई तक भी बोऊंगा नहीं तो भी अपने को उत्पादन अच्छा मिलेगा ना। उधर की दिल्ली को जीवन चक्र जो छे वो पूरा हो जाए, तो हमेशा एक पहला वक्खर मार दे तो ठीक, नहीं अगर वक्खर मारी पाया तो अपने पास में पेराक्वाट डाइक्लोराइड करें जो 24 घंटा में चारा को मारने वाली दवाई आवे वो पहले छिड़की दो तो खरपतवार पूरा मरी जाएगा और उसके बाद आप नहीं कर लियो, पर बाकी उंगना के बाद में एक तरह तरह की दवाई को उपयोग करना थोड़ा रिस्की छे।
1: जैसे की आपने बताया की बोने का पहले जमीन पर मार दो तो कितना दिन तक फिर खरपतवार निकलती नहीं?
0: ओ, नहीं, ये जो पेराक्वाट 24 घंटा जो हम बता रहे हैं कि मारने वाली छे, ये 24 घंटा में खत्म कर देगा, आप उसका बाद में वो नहीं कर सकते फिर। ये मानी चलो कि आप कम से कम आपको 15 से 25 दिन तक खरपतवार नहीं उगने का। फिर
1: पूछूं भाई, इन्हीं फसल में कौन कौन सी बीमारी न लगा ना, उन पर हम नियंत्रण कसो कर सकें?
0: एमा तो सब रंग की बीमारी आवाज, एमा बैक्टीरियल डिसीज भी आवाज, वायरल डिसीज भी आवाज, एका पर आपका फंगस न वो भी दिक्कत आवाज, मतलब एक तना गलन आवाज, मतलब कि जो गोड़ में तनो जहाँ मिट्टी के संपर्क में रहे एक तना गलन की बीमारी भी चले, फिर एक अंदर आपका बैक्टीरियल डिसीज भी छे जो बैक्टीरिया की वजह से हो, एक वहाँ भी दिक्कत आवाज, फिर एक साथ में एक आपकी वायरस वाली डिसीज भी आवाज, तो ये सबका डिसीज तरह तरह की आती रहे, आपका वो पहचानना पड़ेगा कि भैया एक अंदर पत्तो पीलो नहीं पड़नू चाहिए, पत्ता काला काला धब्बा नहीं बननू चाहिए कि वो बैक्टीरियल डिसीज है, एक पर जो फूल निकलना पर बंच बनी जाए वो बंच वाली स्थिति नहीं आवा, तो ये सब चीज निकलें आपके नहीं ट्रीटमेंट कर लेना, आपको कार्बोडाइन जी मेनको जिप को ट्रीटमेंट तो कर ही रहा, साथ में स्प्रे भी कर सकान, स्टेप्टोसाइक्लिन भी अगर एक ले सकान, एक अंदर कभी कई बार इल्ली को भी अटैक देखे जाए तो एक अपन कार्बोलिज है या फिप्रोनिल एक भी स्प्रे करी ना अपन एक कंट्रोल कर ले, मतलब कि कीट को तो ज्यादा असर नहीं है पर रोग न को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
1: बहुत अच्छी बात बताई अपना नियंत्रण का ऊपर बीमारी न का। अच्छा पुष्पन भाई, आप एक समृद्ध न पढ़े लिखे किसान छे, साथ ही आप न कृषि में स्नातक डिग्री भी प्राप्त करेल छे, तो इन्हीं फसल से और हमारा किसान भाई कौन कौन सा लाभ ले सकज, जैसे की फसल में मंडी में मतलब वह नहीं बेचा और आरु आसो काई करी सका जेका से उनका फसल में मंडी में जो कीमत मिले या जो पैसा मिले ओका से भी ज्यादा लाभ मिली सका,
0: अधिक लाभ कमानु छे। हाँ, तो हाँ। ओखा अपन तो एक तो ये देखा कि एक बिजनेस लाइन का अगर हम बात करा तो सीधे सो नियम ये छे कि आप एक वैल्यू एडिशन करो। अच्छा। कोई भी फसल छे ओको वैल्यू एडिशन करो,
1: मूल्य संवर्धन।
0: हाँ, मूल्य संवर्धन करा
1: बिल्कुल,
0: तो ओखा में ओखी कीमत ज्यादा मिलेगा, जैसे अगर आपके पास गेहूं छे तो आप गेहूं मंडी में बेचोगा तो वो भाव बिकेगा, अगर आप बिनी चुनी ना साफ सुथरा करी ना अगर पैकिंग करी ना अगर आप आपका खंडवा मार्केट में बेचोगा तो ओखी कीमत ज्यादा मिलन
1: बिल्कुल।
0: उन्हीं कड़ी में ओसोज अगर हम बात करें तिल्ली की, तो तिल्ली जो छे आज की तारीख में बहुत कम उत्पादन हो, मतलब उत्पादन तो अच्छा छे पर प्राप्त बहुत कम हो रही, मतलब लोग किसान लोग लगावज कम।
1: हाँ।
0: तो एक ही कीमत अभी बहुत ज्यादा छे
1: बिल्कुल,
0: और अब जो छे तिल्ली मतलब शरीर को तेल जो निकल वो तेल आदमी हर किसान हर वर्ग का आदमी का पास में मिलना मुश्किल हुई रही, तिल्ली नहीं मिलती तो फिर वो तेल कहाँ से मिलेगा
1: बिल्कुल,
0: तो किसान हमारी ये राय रहेगा कि किसान सबसे पहले तिल्ली लगाओ
1: बिल्कुल,
0: तिल्ली बोने के बाद में अच्छे तरीके से उत्पादन करो
1: बिल्कुल,
0: साफ सुथरी बिल्कुल सफेद तिल्ली को तेल निकलाड़ा ना, फिर ओखे लेना अपना आसपास या अपना परिचित जो समृद्ध लोग से जो अपने को उपयोग करना चाहे उनका अपन तिल्ली को तेल निकाली ना बेचो या गुड़ पट्टी बनाओ या बहुत सारा आजकल मंडी में अपन देखा ठंड का दिन में गजक वाला बहुत सारा बहुत लोग रहे तो गजक बनाओ तो गुड़ पट्टी वाला ना ले दी सकान, तो तिल्ली को अगर आशा लोग ना से संपर्क करे ना बेचोगा तो उनको मिलेगा, क्योंकि वो जो फैक्ट्री वाला छे वो व्यापारी से ले व्यापारी ना बीच में फिर व्यापारियों को मुनाफा कमाओ।
1: अच्छा,
0: आप सीधा इनका संपर्क करे ना अगर आप बेचोगा तो आपको जो व्यापारी को मुनाफा आपको डायरेक्ट मिल ही जाएगा।
1: अच्छा, तो आप एक समृद्ध किसान छे तो आप अगर एक कच्ची घानी खोलो कभी।
0: हाँ।
1: तो एक आप आपका राय देना चाहो अगर हमारा कोई किसान भाई जो छे वो भी समृद्ध है ना, वो अगर की अच्छो उत्पादन ले ज्यादा खेत में बोवा ना फिर उत्पादन करी ना कच्ची घानी खोला ना तेल बेचे तो कसर
0: बहुत बहुत बहुत बढ़िया चाहिए। अगर कच्ची घानी को अगर अपन तेल की अगर बात कर रहे हैं तो एक अंदर फिर आप तिल्ली को तेल, मूंगफली को तेल, सरसों को तेल,
1: सुनना में ये आयोज की भाई जो कंपनी ना का तेल है राज
0: जी
1: वो उतना शुद्ध नहीं होता, उनमें कहीं ना कहीं तो मिलावट आ जाए। तो एक किसान अपना घर अगर अच्छी फसल तैयार करा
0: जी

0: अगर निकाला तेल को तिल्ली को या अन्य फसल ने जो तिलहनी छे तो वो ओका खुद भी शुद्ध तेल मिलेगा और वो अगर चाहो तो कोई व्यवसाय भी कर सके।
1: हाँ, ओका साथ में हम आपको बहुत सारी दो तीन बात पर आपको फोकस करूंगा कच्ची खांडी का तेल पर।
0: बिल्कुल,
1: कि अगर अगर अपन किसी भी जैसे मूंगफली छे, तिल्ली छे, या सरसों छे, या सूरजमुखी छे, कड़ी छे, अलसी छे, सब का तेल निकाले जाए।
0: बिल्कुल,
1: ये तेल निकलने के बाद में आप इनका बढ़िया आराम से फिल्टर हुई सके ना तेल को एक कैरेक्टर कि अगर अभी तेल का कच्ची घाणी से निकालोगा अगर एक हफ्ता तक अगर आप होगा बिना हिला डोले रखोगा तो उसका अंदर जो थोड़ी बहुत भी अंश में अगर थोड़ा नैनो पार्टिकल जो आयल छे कच्चा
0: अच्छा,
1: वो पेंदे में बैठ जाए।
0: अच्छा,
1: ऊपर को प्योर शुद्ध तेल लियो जाए तो को बोतल में पैक करी ना आप बिल्कुल बेची सको,
0: मतलब अपना आप शुद्ध हो जाए।
1: हाँ, ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाए, ग्रेविटी वालों एक चले जो अंदर,
0: मतलब आपको फिल्टर लगाने की भी
1: जरूरत नहीं आई। आप वो तेल का लेना पैक करी ना बाहर बेची सको ओखा साथ आपका ये तेल बेचने के बाद में आपका किसान वर्ग जो छे एक अंदर जो खली निकले वो खली बहुत ज्यादा पौष्टिक छे।
0: अच्छा।
1: क्यों? क्योंकि उखंदर अभी आपने देखो कोल्ड प्रेस मशीन में आपने डाली नो को तेल निकाले तो वो में तेल निकली गो लेकिन तेल के साथ में बाकी के जो जो दानो थो ओका पूरा पोषक तत्व वो अभी भी मौजूद
0: छे।
1: तो अब वो पोषक तत्व वाला अगर खली अगर मिले ना अगर आप पशु ना खवाड़ोगा तो पशु को शरीर को बैलेंस भी बनी रहेगा, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स को मिलेगा क्या नाम से और थोड़ा बहुत तेल को अंश तो रह जाए खली के अंदर आपका दूध में फैट भी आवागा और पशु भी स्वस्थ रहेगा और बहुत चाव से खावागा तो आपका पशु भी सुधरी जाएगा, पशु की हालत भी सुधरी जाएगा, पशु का पूरा पोषक तत्व मिलेगा। तो आजकल अपन देखा नहीं कि बहुत बढ़िया भैंसी अगर लोग आदमी खरीदे तो हमें ये देखा किया था भैंसी बहुत जल्दी गाप डाली दे या दूध पसे उतरी जाए या फिर वो पलटी रही बार बार या तो दूध में खूब फैट नहीं बैठी रही तो ये सब समस्या ना वो अच्छे की जानवर के अंदर दूध दी रही ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो कुछ ना कुछ दिक्कत आती रही अब हम पहचान नहीं पाता। जबकि योज को इस पैटर्न जो थे कि पहले कच्ची घाणी का हर किसान घर कच्ची घाणी निकलते
0: हाँ, निकलता था
1: हर आदमी कच्ची घाणी को तेल निकालते तो खाते तो खुद भी खाते तो खुद भी स्वस्थ रहते तो ना पशु भी उतना स्वस्थ रहता था।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में उस चीज की कमी हुई गई
0: तो ये तो कुछ बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम
1: बिल्कुल
0: डबल फायदा हो जाएगा। नहीं
1: बिल्कुल बिल्कुल कच्ची घाणी को तेल खानू चाहिए।
0: तो पुष्पेंद्र भाई आपने तो बहुत अच्छी बात बताई तो ये कच्ची घाणी को तेल अगर हमारा किसान भाई कैसे प्राप्त करना चाहो तो अभी कहाँ कहाँ कच्ची घाणी न खोले छे कि जहाँ से हमारा किसान भाई ना मिली सके।
1: देखो अपना वैल्यू एडिशन की अपन ने बात करी कि किसान का ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए तो सबसे सीधी अच्छी बात छे कि कच्ची घाणी को तेल वो उपयोग कर खुद भी खाए पशु न और खली भी लेना आवा पशु न को खिला न रही बात इनका प्राप्त करने की।
0: बिल्कुल,
1: हम शुरू से परंपरा रही अपना आस पास के एरिया में क्षेत्र में जहाँ हाट बाजार भरा है तो वहाँ जहाँ जहाँ बाजार को लगा वहाँ आपको कच्ची घाणी मिल सके। शहर में भी कहीं ना कहीं होता होगा जसवाड़ी में भी छे जहाँ हाट बाजार लगता तो पहले किसान मिलता ही था तो आप खंडवा में भी देखोगा जसवाड़ी में देखोगा तो आसपास के एरिया में भी देखोगा तो कहीं ना कहीं आपको कच्ची घाणी मिली जाएगा जहाँ आप सामान लेना ले सको।
0: तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि हमारा किसान भाई कहाँ से कच्ची घाणी को तेल प्राप्त कर सके। तो भाई पुष्पेंद्र सिंह मौर्य आपने आपका व्यस्ततम समय में से समय निकाला ना हमारा किसान भाई बहन ना तिलहनी फसलें आज की आवश्यकता विषय पर इतनी अच्छी न महत्वपूर्ण कारगर जानकारी दी। उम्मीद छे हमारा किसान भाई बहन ना एक जरूर लाभ मिलेगा वो लाभान्वित होएगा एका लेना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
1: राम राम।
0: किसान भाई अभी हम स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम जसवाड़ी का प्रगतिशील कृषक भाई पुष्पेंद्र सिंह मोरिसी तिलहनी फसल नमा तिल्ली की खेती आज की आवश्यकता विषय पर भेंटवार्ता सुन रहा था। आपसे बातचीत करी आपका भाई जगदेव सिंह फरेना और आओ अब समय छे आज का कृषि समाचार नको। तो आज का समाचार इना प्रकार से छे। भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इना साल अलनीनो का असर का कारण बारिश की अनिश्चितता बनी रहेगा तो एक देखता हुआ खरीफ फसल में सोयाबीन मक्का अरहर उड़द मूंग न अन्य फसल न की बुआई का लेना रेस्ड बेच बेड पद्धति या मेड़ नाली पद्धति को उपयोग किसान भाई कर इन्हीं पद्धति न का उपयोग करने से ज़्यादा बारिश की स्थिति में फसल को बचाव हो जाए न कम बारिश होना पर नाली न नमी पर्याप्त बनी रहे फसल न की बुआई का पहला खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था रखा न बुआई का समय 15 से 20 मीटर बाद खेत से जल निकास की नाली न बढ़ावा। तो भाई यो थे अपना आज का कृषि समाचार और आओ अब जाने लो आज मौसम मंडी भाव का हाल। सबसे पहले कृषि उपज मंडी का भावना की जानकारी तो सोयाबीन को न्यूनतम भाव रहे आज 4000 न अधिकतम 6901 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूँ को न्यूनतम भाव रहे 2180 न अधिकतम 2672 रुपये प्रति क्विंटल। न चना को न्यूनतम भाव

5,000 ना, अधिकतम 5,872 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव 2,100 रुपया ना, अधिकतम 2,201 रुपया। तुअर को न्यूनतम भाव रहे 6,705 रुपया ना, अधिकतम 6,901 रुपया। न मूंग को भाव रहे न्यूनतम 6,800 ना, अधिकतम 7,526 रुपया। तो ये थी कृषि खंडवा अनाज मंडी से प्राप्त कृषि उपज का भाव की जानकारी। और मौसम की जानकारी सुनी लेवाज। आज सूर्योदय सुबह 5:43 पर हुए, तो सूर्यास्त शाम 7:10 पर। आज का दिन को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहे, रात के न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो ये मौसम की जानकारी भाई बहनों। और अब कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न करे थो, उत्तर बतावना को समय आई गोज। तो प्रश्न थो, प्राकृतिक खेती अपनावना वाला किसान नख केंद्र शासन द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रोत्साहन स्वरूप कितनी राशि दी जाए। तो एक उत्तर है, इन योजना के अंतर्गत प्राकृतिक खेती अपनावना पर किसान नख 2 साल तक प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपया दी जाए। तो इसे हमारा आज का प्रश्न उत्तर एक साथ अपना आज का किसान वाणी कार्यक्रम समय हाँ पूर्व ही रही। आपका भाई जगदीप सूर्यदेव आज्ञा, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से महिला 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच ओवल लंदन में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: Yeah, looking at that option, was it coming out of the stumps? But here it looks quite close. The ball was below the knee roll, and it appears that she's safe because there is a spike when the ball crosses the bat, and that's the reason the umpire.
2: Imla Raina, Nirdeshak Lochan Bakshi.
3: Manju, oh Manju, अरे Manju, कहाँ हो भाई? जल्दी आओ।
4: क्या है शील? बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियाँ कौन रही है?
3: अरे बिजली बिजली कहाँ कौन थी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि बहुत मजा आया।
4: तू इतना ही जान कर रुक जा, नहीं तो नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी।
3: शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी। बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, पर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। हाँ, मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है।
4: राजा? कौन राजा?
3: है एक राजा। हाय, काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
4: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
3: ओह, लड़का? कैसा लड़का? जैसा मेरा राजा है।
4: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
3: अपने राजा के? ओ मंजू, हाउ ही लव्स मी।

0: हूँ। कौन? हू लव्स यू? कौन है? कहाँ से आया? क्यों आया? क्या करता है? किसका बोटा है? किसका पोता है?
1: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बार बढ़ती ही जा रही है। मेरे दिमाग में फ्लड आ गया। तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ, नहीं तो डूब जाऊंगी।
0: ओहो, उसके खानदान का भी कुछ पता है?
1: अरे मंजू जी, उसका खानदान, पानदान, पीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है। भगवान कसम, वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा।
0: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?
1: दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया है।
0: दीपक? कौन दीपक?
1: हाँ, वो कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानू। वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे, तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है बस।
0: सुन, कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
1: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
0: नहीं देखा तो क्या हुआ? सुन, वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हंसोड़ सा था।
1: अब मैंने गोरा वोरा, लंबा उम्बा, हंसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता है।
0: तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही
1: थी? नहीं, आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी। अभी याद करती हूँ, हाँ कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
0: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है? आता है तीज त्योहार पर।
1: अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं पर ठीक से कभी बात नहीं हुई। नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा। बाय बाय।
0: कर दिया।
2: भाभी, भाभी, भाभी, वो मतलब भाभी,
0: हाँ।
2: वो आपकी बहन है ना?
0: हाँ।
2: उससे मिलना चाहता हूँ।
0: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
2: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
0: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
2: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
0: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
2: वो मेरा नाम जानती है?
0: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
2: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाहा कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुँह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
0: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई। चल, कुछ कहेगा भी?
2: जरूर कहूंगा।
0: तो कहना।
2: कहूं? कह दूं भाभी? भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे
0: हाँ?
2: शादी करना चाहता हूँ। लो, कह दिया।
0: हाँ, कह दिया भाई। कह दिया। अब जब अपने राजा के गुण गाया करती है।
2: राजा के? कहाँ के राजा के?
0: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहीं के, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील चाचा ने कहा से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज कहीं की, छोड़ उसका ख्याल।
2: भाभी, ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी, वो तो देवी है, देवी। कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इतने कोमल गंभीर था, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने
0: की। अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, अब शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
2: पर भाभी, ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
0: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
2: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है। एक बार तुम मुझे मिलवा दो, प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी, आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
0: अच्छा सुन दीपक, सुन, मुझे ख्याल आया।
2: क्या? हा?
0: मैं शील को बुलाती हूँ, और सुन, उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुनाने लगे।
2: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी, ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी,

0: शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो। आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। अरे वो उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
0: अच्छा
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू, जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन, इधर आ। उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे। अच्छा। जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है। मैं तो छुपे जाती
0: हूँ। तू छुप जा भाभी।

0: है।
1: ओह
0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली का।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानू, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक
0: जी। जानता हूँ जी, मतलब ये जानता तो नहीं था, पर भाभी अब जान गया।
1: मैं अभी कॉफी को कहा।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है, पर ख्वाबों का क्या?
0: एक शेर कहा है, सुना दूं?
1: जरूर।
0: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का गर जरिया होता, वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता। कभी मेरी तमन्ना भी सजकर

0: होता।
1: वाह वाह,
0: पसंद आया?
1: आहा, क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ, सच तो है।
0: सच है? तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते।
0: शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात ये है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी, क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साहे के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
1: जी बहुत भारी है क्या?
0: शील जी प्लीज, शील जी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ। शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब आई लव यू।
1: लेकिन क्यों
0: क्यों क्यों, क्या राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं।
0: पता नहीं तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
0: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
1: वो बहुत बहादुर है।
0: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
1: पर वो बहुत वफादार, बहुत लॉयल है।
0: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
1: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
0: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
1: देखो
0: देखिए।
1: अच्छा देखूंगी।
0: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
1: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
0: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा।

0: मेरी गेंद उठाए ना उठेगी।
1: और फिर शील जी, अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
2: तो जाइए, कमरा खुला है।
1: कमरा खुला है, लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
2: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अच्छा। वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
2: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
1: ये बात है, तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी, मैं जाता हूँ।
2: जाइए।
1: ओह माय गॉड, ये राजा, इनका महबूब। सच में शील जी, ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है। बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा। बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी, आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे फाड़ गया।
2: राजा, राजा, be quiet, चुप हो जा मेरे राजा। हाँ, तो आपने देख लिया मेरे राजा को?
1: देख तो आया आपके राजा को, पर शील जी, मतलब आप मतलब समझ गई ना?
2: समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं करेंगे?
1: कभी नहीं, कभी नहीं। तुम मेरी महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
3: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी यह नाटिका सुनी। निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है AM तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है AM तुरास ने।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारम्भ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी।

0: राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
2: Facilitating mobility.
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C295 परिवहन

0: विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ

0: केदारनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है राजकुमार।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत। गीत है नीरज का, संगीत सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वो नगमा जिसे लिखा है शिवांद रिजवी ने। तर्ज है ओपी नैयर की, फिल्म का नाम है हम साया।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में सरती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

अगला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीत है मदन मोहन का, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी, यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा

सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

आशी और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

0: प्यार वफा
1: कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिरा जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊँगा। तो हमने सोचा कि ये उसको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फ़ोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूज़िक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में,
2: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में, गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कांग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नज़र, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलते हुए रात से गुफ्तगू, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हम सफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: जाए रात।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धर।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRAMJI अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
3: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
2: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान